3.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि तदनुसार 4 जून सन 2026 इस समय सुबह के 5:58 और 36 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन। प्रभु का स्मरण जीवन की वह साधना है जो बिना किसी शोर के मन को भीतर से बदल देती है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करते बल्कि स्वयं को उनकी कृपा से जोड़ते हैं। संसार में धन, पद और प्रतिष्ठा मनुष्य को कुछ समय के लिए ही सुख दे सकते हैं, लेकिन मन की सच्ची शांति केवल ईश्वर के सानिध्य में ही मिलती है। प्रभु नाम का दीपक उस तरह का दीपक है जो जीवन के अंधकारमय क्षणों में भी आशा का प्रकाश बनाए रखता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हृदय में विश्वास और मुख में प्रभु का नाम हो तो हर राह कठिन लगती है। इसलिए हमें अपने दिन का कुछ समय भगवान को अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जो मन प्रभु से जुड़ जाता है वो धीरे धीरे चिंता से मुक्त होकर आनंद और संतोष से भर जाता है। प्रभु स्मरण ही मन की शांति और जीवन की सच्ची संपदा है। चिंतन के बाद आइए शुरुआत करें भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की। तो लीजिए रसपान कीजिए इस शिव भजन का।

जब जीवन की राह कठिन लगे, मन में विश्वास रखें कि हम सब माँ भगवती की शरण में हैं। उनका करुणामयी आशीर्वाद हमें साहस, शक्ति और सही मार्ग प्रदान करता है। जो माँ का स्मरण करता है, उसके जीवन में आशा और आत्मबल का दीप सदैव जलता रहता है।

साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक। जब हम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखना सीख जाते हैं तब मन से भेदभाव मिट जाता है और प्रेम करुणा और सेवा का प्रकाश जीवन में फैलने लगता है।

श्रोताओं, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय रचना मानस गान।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा हिमाचली गीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। 8:30 पर आनंद लीजिए का कार्यक्रम गाने सुहाने का। गीतांजलि कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे हम सुबह 9:00 और इसी कार्यक्रम में 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं आकाशवाणी शिमला से, और गीतांजलि कार्यक्रम प्रादेशिक समाचारों के बाद जारी रहेगा 10:00 तक। 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम गीतों का कारवां। 10:30 पर हिमाचली गीत आप सुन पाएंगे। कार्यक्रम होगा पहाड़ों के सुर। प्रादेशिक समाचार एक बार फिर सुने जा सकते हैं सुबह 11:00, जिन्हें आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। 11:05 पर आज कुछ पंजाबी गीत सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम रहेगा महक पंजाब दी। 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 का समय रहता है कार्यक्रम सैनिकों के लिए के प्रसारण का। 12:30 पर बहनें अपना कार्यक्रम मिंजरा सुनेंगी। दोपहर 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 1:10 से लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का, जिन्हें आकाशवाणी मुंबई से रिले किया जाएगा। इसी दौरान दोपहर 3:00 प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर जिला की चिट्ठी आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। शाम 5:00 तक विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5:00 समाचार सुने जा सकते हैं, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 5:00 हिंदी में समाचार रहेंगे और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन। 5:10 पर आनंद लीजिएगा संध्याकालीन भजनों का। आज के भजन फिल्मों से सुनवाए जाएंगे। युवा साथी कार्यक्रम युवा मंच सुनेंगे शाम 5:30 पर। 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:05 पर किसान बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा। 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम मौजा गराइंदिया। 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। और आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे 7:10 पर विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा। शाम 7:42 पर आकाशवाणी शिमला आपको लिए चलेंगे, जहां से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। 8:00 मिले जुले गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सबरस में देशगान 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या रात 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से सुने जा सकते हैं। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। 9:30 पर आज आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रंगे गजल का, जिसमें कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी गजलें आपको सुनवाई जाएंगी। रात 10:00 प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

श्रोताओ, ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ देर में सबसे पहले आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयव्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लाख आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लाख ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मंत्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रीय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खंडस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने ही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायां अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्री शाह पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40+ जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमंत्री अमित शाहः तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोक संतप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम है सुबह सुहानी और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीलम जानी पहचानी। नमस्कार श्रोताओं, नई सुबह में नई उम्मीदों के साथ नई ऊर्जा के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। और अगले आधे घंटे तक बातें होंगी आपके साथ और कोशिश होगी आपकी सुबह को और सुहानी बनाने की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं उस बारे में। सबसे पहले कार्यक्रम में सुविचार श्रोताओं के साथ साझा किया जाएगा, उसके बाद जानेंगे आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हुई। साथ ही बात करेंगे उन महान हस्तियों की जिनका जन्म या पुण्यतिथि आज के दिन जुड़ी है, और अगर आज कोई है विशेष दिवस उस बारे में भी आपके साथ जानकारी साझा की जाएगी। फिर रहेगा समाचार झरोखा, जिसमें देश दुनिया, खेल और अन्य प्रमुख घटनाओं की संक्षिप्त जानकारी होगी। और आखिर में जानेंगे हम मौसम का हाल, बात करेंगे आपके शहर और आसपास के क्षेत्र के मौसम के हाल के बारे में, और आप उसके हिसाब से बना सकेंगे अपनी पूरी दिनचर्या की एक रूपरेखा। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और आपकी इस सुबह को और सुहाना बनाते हैं और खूबसूरत बनाते हैं आपके आज के दिन को इस प्यारे से गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, कहते हैं सुबह की शुरुआत अगर अच्छे विचार से हो तो पूरा दिन पॉजिटिविटी से भर जाता है। इसीलिए बात सबसे पहले आज के सुविचार की। हर सफर में कारवां साथ चले ये जरूरी नहीं, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ता छूट जाने पर भी कदम बढ़ाना नहीं छोड़ते। जी हाँ, जिंदगी एक बड़ी दिलचस्प सी किताब है। कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ एक पन्ने तक चलते हैं, कुछ एक अध्याय तक, और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जिस भीड़ को हम अपना सहारा समझते हैं वही भीड़ किसी मोड़ पर पीछे छूट जाती है। ऐसे में इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो रुक कर पीछे छूटे लोगों का इंतजार करे, उन लोगों के लिए इंतजार करे जो जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ कर चले गए, या फिर अपने सपनों का हाथ थाम कर आगे बढ़ जाए। सच तो यह है कि हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने वाले मुसाफिर ने कभी न कभी अकेले चलने का साहस जरूर दिखाया होगा, क्योंकि हौसलों का काफिला सिर्फ काफिला नहीं होता, उसका साथी सिर्फ विश्वास होता है। और जब बात अकेले चलने की हो, अपने रास्ते पर डटे रहने की हो, तो याद आता है हिंदी सिनेमा का एक बेहद प्रेरणादायक गीत, एक ऐसा गीत जो मानो हर संघर्ष करने वाले इंसान से कहता है कि अगर कोई साथ ना दे तब भी कदम मत रोकना। तो आइए सुनते हैं फिल्म संबंध का ये अमर गीत मुकेश की भावपूर्ण आवाज में, जो आज भी हिम्मत और आत्मविश्वास का संदेश देता है।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम है सुबह सुहानी। श्रोताओं, कैलेंडर की तारीखें सिर्फ दिन नहीं होती, ये अपने भीतर इतिहास के अनगिनत किस्से, यादें और प्रेरणाएं समेटे होती हैं। तो आइए वक्त की इस खूबसूरत सुरंग से गुजरते हैं और जानते हैं कि 4 जून के दिन इतिहास ने कौन कौन से सुनहरे, रोमांचक और यादगार अध्याय लिखे। सबसे पहले बात कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की। गर्म हवा के गुब्बारे का पहला सफल सार्वजनिक प्रदर्शन आज ही के दिन हुआ, यानी 4 जून के दिन ये प्रदर्शन हुआ साल 1783 को, और फ्रांस के एनोने शहर में इस प्रदर्शन को किया गया। इसे मोंटगोल्फियर बंधुओं जोसेफ मिशेल और जैक्स एटीएन ने बनाया और प्रदर्शित किया। ये दोनों फ्रांसीसी कागज निर्माता थे। 4 जून 1783 के इस पहले प्रदर्शन में ये गुब्बारा मानव रहित था। ये लिनेन के कपड़े से और कागज से बना था। इसे पुआल और ऊन जलाकर गर्म हवा इसमें भरी गई। गुब्बारा करीब 3000 फीट यानी लगभग 1000 मीटर तक ऊपर उठा और लगभग 2 किलोमीटर तक की इसने दूरी तय की। यहीं से इंसान ने आसमान छूने के सपनों की नई उड़ान भरी। 4 जून साल 1919 की बात करें तो अमेरिका में महिलाओं को मतदान के अधिकार देने वाले संविधान संशोधन को सीनेट में आज के दिन मंजूरी मिली। ये महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। बात करें साल 1940 की तो इस साल में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रसिद्ध डनक्रिक इवैक्यूएशन यानी डनक्रिक निकासी, जिसका कोड नेम ऑपरेशन डायोनेमो था, ये अभियान पूरा हुआ जिसमें 3 लाख से अधिक सैनिकों को सुरक्षित निकाला गया। इसे सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा बचाव अभियान माना जाता है। साल 1942 में हुई आज ही के दिन मिडवे की लड़ाई, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच हुआ एक ऐतिहासिक और निर्णायक नौसैनिक युद्ध था। ये लड़ाई 7 जून तक चली। अब जानते हैं 4 जून को जन्म लेने वाली खास हस्तियों के बारे में। एंजेलिना जोली का जन्म 4 जून साल 1975 को हुआ। वह सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं थी बल्कि मानव सेवा कार्यों के लिए भी पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। जॉर्ज तृतीय भी आज ही के दिन जन्मे। साल 1738 में इनका जन्म हुआ। साल 1760 से 1820 तक इनका शासनकाल रहा। ब्रिटेन के इतिहास में उनका शासनकाल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हीं के शासनकाल में अमेरिकी क्रांति हुई थी। आज ही के दिन जन्मे सुरों के जादूगर एसपी बाला सुब्रमण्यम। साल 1946 में इनका जन्म हुआ। अपनी बहुमुखी गायकी और मधुर आवाज से उन्होंने करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई। 4 जून 1959 को जन्म हुआ उद्योगपति अनिल अंबानी का। आज ही के दिन जन्मे है। साल 1988 में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत। और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नूतन का। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की जब भी बात हो तो अभिनेत्री नूतन का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। खूबसूरत, सादगी से भरपूर और अदाकारी का ऐसा संगम बहुत कम कलाकारों में देखने को मिलता है। आज ही के दिन साल 1936 में जन्मी नूतन उन अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने ग्लैमर से ज्यादा अभिनय को महत्व दिया। उन्होंने अपने 4 दशक के लंबे फिल्मी सफर में ऐसी ऐसी भूमिकाएं निभाई जो आज भी अभिनय की पाठशाला मानी जाती हैं। उन्हें 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और साल 1974 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। उनके बारे में एक बेहद दिलचस्प बात है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में नूतन ने मिस इंडिया का खिताब जीता। साल 1952 में 2 अलग-अलग मिस इंडिया पेजेंट आयोजित हुए थे। इस प्रतियोगिता में नूतन ने मिस मसूरी और मिस इंडिया ये दोनों खिताब अपने नाम किए, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी सादगी और स्वाभाविक अभिनय बनी। कहते हैं कैमरे के सामने वो अभिनय नहीं करती थी बल्कि अपने किरदार को जीती थी। कुछ चेहरे वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और भी नायाब हो जाते हैं। नूतन उन्हीं कलाकारों में से एक थी। उनकी आंखें बोलती थी, मुस्कान कहानी कहती थी और अदाकारी सीधे दिल में उतर जाती थी। नूतन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वे भारतीय सिनेमा की संवेदनशील आत्मा थी। उनके किरदार आज भी हमें एहसास दिलाते हैं कि सच्ची अदाकारी कभी पुरानी नहीं होती। तो अब नूतन की यादों को ताज़ा करते हुए सुनते हैं
उन्हीं पर फिल्माया गया एक गीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया आकाशवाणी धर्मशाला। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। आज विशेष के अंतर्गत अब बात उन खास हस्तियों की जो आज के दिन इस दुनिया से रुखसत हुई। जर्मनी के अंतिम सम्राट विल्हेम द्वितीय का निधन 4 जून साल 1941 को हुआ। आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रख्यात वैद्य अचंत लक्ष्मीपति का निधन 4 जून साल 1962 को हुआ। भारतीय चिकित्सा परंपरा को नई पहचान दिलाने में उनके योगदान को आज भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। महान बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन का निधन 4 जून 2010 में हुआ। उन्हें खेल जगत के सबसे सफल प्रशिक्षकों में गिना जाता है। 4 जून भारतीय रंगमंच और सिनेमा के लिए एक बेहद भावुक तारीख भी है। इसी दिन वर्ष 2016 में मशहूर रंगकर्मी और अभिनेत्री सुलभा देशपांडे ने दुनिया को अलविदा कहा था। थिएटर से लेकर फिल्मों तक अपने सशक्त अभिनय की छाप छोड़ने वाली सुलभा जी आज भी कला जगत की प्रेरणादायक हस्तियों में गिनी जाती हैं। 4 जून हिंदी साहित्य के जगत के लिए एक भावुक दिन है। इस दिन साल 2018 में मॉरिशस के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अभिमन्यु अनंत का निधन हुआ। अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने प्रवासी भारतीयों के जीवन, संघर्ष और संवेदनाओं को ऐसी आवाज दी जो आज भी हिंदी साहित्य में अमिट रूप से दर्ज है। तो दोस्तों, 4 जून का ये दिन हमें याद दिलाता है कि कभी आसमान में पहली उड़ान भरी गई तो कभी युद्धों के इतिहास ने खुद को बदला, कभी अधिकारों की नई सुबह आई तो कभी ऐसी महान हस्तियां जन्मी जिन्होंने दुनिया पर अमित छाप छोड़ी और कुछ महान हस्तियां इस दुनिया को रुखसत कह गई। इसी सोच के साथ कि हर तारीख अपने भीतर एक कहानी छुपाए बैठी है, बस उसे सुनने वाला कान और समझने वाला दिल चाहिए। आज विशेष में श्रोताओं, आज बस इतना ही। कार्यक्रम सुबह सुहानी में श्रोताओं आगे बात करते हैं। श्रोताओं, कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं और बदलती तारीख जो है अपने साथ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई महत्वपूर्ण विषय, संघर्ष, उपलब्धि या मानवीय मूल्य की याद लेकर आती है। यही कारण है दुनिया भर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं जिनका उद्देश्य केवल एक दिन मनाना नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना होता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हिंसा के शिकार निर्दोष बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। श्रोताओं, बच्चों की मुस्कान किसी भी समाज की सबसे खूबसूरत पहचान होती है, लेकिन जब कभी वही मुस्कान हिंसा और युद्ध या शोषण की वजह से फीकी पड़ जाए तो पूरी मानवता को सोचने की जरूरत होती है। हर साल आज के दिन को दुनिया भर में हिंसा कि शिकार निर्दोष बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत हुई वर्ष 1982 में। यूनाइटेड नेशंस ने इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य उन बच्चों की पीड़ा को याद करना है जो युद्ध, आतंकवाद, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, शोषण और अन्य प्रकार की हिंसा के शिकार होते हैं। श्रोताओं, दिलचस्प बात यह है कि ये दिवस केवल दुख व्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिए सुरक्षित, खुशहाल और सम्मानजनक माहौल बनाने का संदेश भी देता है। आज के दौर में हिंसा केवल शारीरिक ही नहीं होती बल्कि मानसिक और ऑनलाइन उत्पीड़न भी बच्चों पर गहरा असर डालता है। इसीलिए ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे को प्यार, सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार है। एक छोटी सी बात हमें हमेशा याद रखनी है, बच्चे कल का भविष्य भी है और आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर उनकी मुस्कान सुरक्षित है तो हमारा आने वाला कल भी सुरक्षित है। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सुरीली गीत की ओर, क्योंकि बच्चों की हंसी और संगीत दोनों ही दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं।

जी एक ऐसा गगन, एक ऐसा चमन हो, एक ऐसा वातावरण हो जहां सबके लिए प्यार हो। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, आज की मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को फिर से लागू करने पर सहमति बनी है, और वहीं ईरान अमेरिका तनाव को लेकर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी। मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों के कारण क्षेत्र में सतर्कता बढ़ गई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री इवेट कपूर 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं, और भारत ब्रिटेन संबंधों, व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत होने की उम्मीद है। भारत, अपने देश की हम बात करें छोटाओं, तो भारत मॉनसून विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज देश के सभी हिस्सों की ओर आगे बढ़ सकता है। कई राज्यों में भारी बारिश और गरज चमक की संभावनाएं जताई जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं, जहां सीमा सुरक्षा और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की पहली बैठक संपन्न हुई है सफलतापूर्वक। बैठक में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

हिमाचल के मौसम की बात करें श्रोताओं, तो हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 जून को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। धर्मशाला के आसपास के क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकतम तापमान लगभग 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वर्षा की संभावना 70% से अधिक बताई गई है, लेकिन पर्यटकों और स्थानीय लोगों को छाता और रेनकोट अपने साथ रखने की सलाह दी जाती है और मौसम के अनुसार ही अपनी आगे की दिनचर्या की एक रूपरेखा हमारे श्रोता तैयार कर सकते हैं। कार्यक्रम में बातों का सिलसिला आज यहीं पर थमता है और सुबह सुहानी कार्यक्रम की ये रही अंतिम पेशकश। ये गीत आपके लिए

0: तो श्रोताओ, ये था आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली गीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में संवाद बहुत जरूरी है और यही कोशिश करता है आपका अपना आकाशवाणी धर्मशाला का परिवार।
2: जी श्रोताओं, चैटिंग और मैसेजिंग की इस दुनिया में आकाशवाणी धर्मशाला आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मंच जहां जुड़ती है आम जनता की आवाज, उनके विचार, उनके सुझाव और उनकी उम्मीदें।
1: आपकी इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी, जहां हर राय मायने रखती है, हर आवाज गूंजती है।
2: साथियों, जनवाणी सशक्त माध्यम है आपके और हमारे बीच संवाद का, जिसमें आप फोन कॉल्स के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं।
1: क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है, तो आइए मिलकर अपनी बातें साझा करते हैं कार्यक्रम जनवाणी में हर शुक्रवार सुबह 9 बजे FM धर्मशाला पर।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं शुभ प्याग। हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम है, अब आपको सुनवा रहे हैं बलवीर सिंह का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:55 हुए हैं। अब सुनिए देशगान।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, अब एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं, कार्यक्रम किसान वाणी जिसे आप सुना करते थे शाम 7:10 पर, इस कार्यक्रम के समय में कुछ परिवर्तन किया गया है। एक विशेष वीवीआईपी कार्यक्रम के कारण ये कार्यक्रम अब आप सुन सकते हैं शाम 6:05 पर, और 6:05 से 6:35 तक ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। 1 जून से 21 जून तक इस कार्यक्रम का ये समय रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर।

सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप पहले समाचार प्रभात सुनेंगे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
7: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
8: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
7: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
9: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
7: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
10: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
11: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
3: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
12: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
3: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. US Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a five-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of foreign affairs, economy and finance, science and technology, communication and information, and transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as foreign minister in 2015 and as vice president in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
14: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
13: Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council, NEC, in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion and handloom and handicrafts. Union Minister for Development of Northeastern Region, Jyotiraditya Sindhya, Minister of State, Sukanta Majumdar, governors and chief ministers of all the 8 Northeastern states, other members of NEC and senior officers of central and state governments will be present at the meeting. U.S. Secretary of State Marco Rubio told lawmakers that the United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. Responding to questions about his recent visit to India during a House Foreign Affairs Committee hearing last night, Rubio said Washington and New Delhi are nearing completion of the pact. We have a report.
15: Secretary Rubio repeatedly highlighted India as an important strategic partner in the Indo-Pacific, signaling growing momentum in economic ties between the world's largest and oldest democracies. He said his visit to India also included discussions with counterparts from the Quad, a grouping comprising India, the United States, Japan, and Australia. Mr. Rubio indicated that the four countries are moving beyond dialogue towards concrete projects, including enhanced maritime cooperation across the Indo-Pacific. Earlier, U.S. Ambassador to India Sergio Sergio Gore also said that 99% of work on the trade deal is done.
16: We're very optimistic. Look, we're 99% there. The last 1% we're working on, to put into perspective, we've been working on this deal for a year and a half. You have two like-minded partners, the United States and India, that want to get this done. And the incredible thing about this is it will be a win-win situation for both of our countries.
15: Meanwhile, Mr. Rubio further highlighted a new initiative known as Pax Silica, involving 14 countries working together to secure supply chains linked to artificial intelligence. With Vishal's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
13: Varanasi, the parliamentary constituency of Prime Minister Modi and one of the world's oldest living cities, is once again set to witness a historic international event. After successfully hosting G20 meetings, Varanasi will now host the second meeting of the BRICS Culture Working Group today and tomorrow. Representatives from 11 countries, including China, Brazil, Egypt, Ethiopia, and Indonesia, will take part in this meeting. The meeting will bring together senior diplomats, policymakers, and cultural experts. More from our correspondent.
6: A special exhibition of Kashi's world-famous GI Tag and ODOP, that is One District, One Product products, will also be organized during the meeting. At the exhibition, six artisans will display six unique products representing Varanasi's rich craft traditions. These products are living symbols of Kashi's centuries-old art, craftsmanship, and cultural heritage. Through the exhibition, foreign delegates will not only be introduced to the uniqueness of these products, but local artists and artisans will also get an opportunity to showcase their products to the global market. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
13: The India Meteorological Department, or IMD, has issued an orange alert for heavy rainfall in Kerala and Mahi today. Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan, Telangana and Vidarbha are likely to witness thunder squalls today, while a dust storm is expected in parts of West Rajasthan. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards ease of doing business. A report.
17: India has undertaken sustained reforms over the past 12 years to improve its business regulatory environment and improve ease of doing business. These reforms have strengthened investor confidence, promoted entrepreneurship, and enhanced India's position as a globally competitive business destination. Startup India initiative, launched in 2016, is nurturing innovation, promoting entrepreneurship, and enabling investment-driven growth. Due to the efforts of the government, the number of startups has gone up to 2,23,000 in March this year from just around 500 in 2016. The Income Tax Department launched the new e-filing portal in June 2021 to provide greater taxpayer convenience and a modern, seamless experience. GST was introduced in 2017 and it replaced a fragmented and complex indirect tax regime that burdened businesses and consumers alike. GST reforms announced in September last year provided an additional boost to ease of doing business. Talking to Akashwani News, a chartered accountant Manoj Basir of Thane in Maharashtra said that the reforms brought by the government in direct and indirect taxes has brought economic stability.
18: The indirect and direct tax reform undertaken by central government are a major step forward the country's economy. Through its indirect tax reforms, the government has moved towards the vision of one nation, one tax. It has also significantly reduced the complexity of multiple tax structure by consolidating into fewer slabs, and there are indications that further rationalization may take place in the future.
17: To address procedural hurdles and simplify MSME registration, the government introduced Udyam Registration Portal. The MSME registration registrations on the portal has increased from 10,000 in October 2020 to over 831,000 till date. To digitize and make a public procurement more streamlined and inclusive, Government e-marketplace GEM was introduced in 2016. It is connecting women entrepreneurs, startups, MSEs, self-help groups and Dibyangjans to mainstream procurement. It has achieved a cumulative gross merchandise value of over 18 lakh crore rupees. Speaking to Akashvani News, a seller in GEM and a CMD in a company, Kamini Gupta, said the process in GEM is simple and transparent.
9: The most important thing was how to reach out to different departments. And we became a seller on GEM platform, which is a government e-marketplace. And GEM became a blessing in our lives because it makes government purchasing transparent, efficient and hassle-free.
17: India's ease of doing business framework today reflects the combined strength of digital infrastructure, policy reforms and trust-based governance. With Dipendra, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
13: The inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship is set to kick off this evening at Trans Stadia in Ahmedabad, Gujarat, marking a historic milestone on the global sporting roadmap. Prime Minister Modi will virtually join the mega event in the evening to share his best wishes as yoga enthusiasts and athletes from across the globe gather for the competition. We have a report from a correspondent.
10: The five-day event will witness participation from over 400 participants from 60 countries, including the United States. Organized under the aegis of World Yogasana and hosted by Yogasan Bharat, this milestone event aims to pave the way for the inclusion of yoga in multi-sports event globally, along with spreading awareness about yoga and wellness globally. Competitors will participate in seven official Yogasan categories, including artistic and rhythmic yoga divisions, where they will be assessed on strength, flexibility, balance, endurance, and precision under global standardized judging criteria. Aparna Khun, Akashvani News, Ahmedabad.
13: A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a guest house in the Malviya Nagar area of New Delhi yesterday. Delhi police said the deceased include 9 Indian nationals and 12 foreign nationals. The police said a case has been registered and an investigation is underway. In another fire incident, 3 people lost their lives and several others sustained injuries in Bihar. The incident took place after a massive fire broke out at a private hospital located under the jurisdiction of the Brahmapura police station in Muzaffarpur last night. Muzaffarpur District Magistrate Subrat Kumar Sen confirmed the deaths and stated that a number of patients remain in critical condition. And in sports, in football, hosts India have booked their place in the final of the SAF Women's Championship after defeating Bhutan 1-0 in the semi-final at Margao in Goa yesterday. Samfida Nongroom scored the match-winning goal in the 58th minute to help India move into their first SAF Women's Championship final in 6 years. Five-time champions India will now face defending champions Bangladesh in the title clash on Saturday at 6:30 p.m. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
19: Thank you, Anuja. The headlines in all the dailies are full with the tragic news of one of the deadliest fires in Delhi in recent years. Hindustan Times writes, safety gaps spark another tragedy as 21 die in blaze that swept through the five-story hotel located in a narrow lane crowded locality in South Delhi. An editorial in The Hindu writes on how India scaled its startup industry from 2016 to 2025. The Startup India scheme has truly come of age due to the supportive policy environment, robust startup growth and a positive investment climate. Cabinet backs ordinance to ease tax rules for foreign investors in some securities, states the Times of India. The Economic Times comes up with a story on domestic travel demand remains strong despite rising fuel costs and airfares and fewer flights under the headline Summer Travel Plans Take No Break. And finally, the Tribune writes about a memorable moment when the Tibetan spiritual leader, the 14th Dalai Lama, was presented with a Grammy Award won by his audiobook Meditations, The Reflections of His Holiness. And with that, it's back to you, Anuja.
13: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with acting President of Venezuela Delcy Rodriguez in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahi today. First,

0: World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला. प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने सुहाने. जी दोस्तों, घड़ी ने बजा दिए हैं 8:30 और हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए कार्यक्रम गाने सुहाने, थोड़ी सी म्यूजिक थेरेपी इस प्रोग्राम में. अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं, ऑफिस पहुंचने की जल्दी में हैं, घर में तैयारी कर रहे हैं ऑफिस स्कूल कॉलेज निकलने की, या घर के काम निपटा रहे हैं, तो बस तैयार हो जाइए मनोरंजन के लिए. और घर में अगर हैं तो बस आराम से बैठ जाइए, चाय का कप हाथ में लीजिए, अगले कुछ मिनट अपने लिए निकाल लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो चुका है कार्यक्रम गाने सुहाने, जहां बातें होंगी हल्की फुल्की और गाने कर देंगे आपके दिलों को खुश. आज की शुरुआत एक ऐसे गाने से करते हैं जो मिलते ही ना कोई फॉर्मेलिटी, बस सिर्फ दोस्ती का एहसास. तो मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को एक बड़ा सा सलाम, एक प्यारा सा नमस्ते. पेश है ये गीत.

जी हाँ दोस्तों, एक एक दिन एक एक पल बीत रहा है। अपनी सभी खुशियों को समेट लीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। हर दिन स्पेशल होता है, लेकिन साल का एक दिन होता है जो सबसे ज्यादा स्पेशल होता है, खास होता है। जाहिर है वो दिन है अपना बर्थडे, वो दिन जब मोबाइल नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा ही बजते हैं, सोशल मीडिया पर स्टोरीज की भरमार होती है और हर कोई कहता है पार्टी कब दे रहे हो। अगर आज आपका भी जन्मदिवस है तो आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी खुशियों, कामयाबी और अच्छे पलों, सुखद पलों से भरी हो। और अगर आपके किसी अपने किसी दोस्त, किसी भाई, परिवार के किसी भी सदस्य का आज बर्थडे है तो अगला गीत उनके नाम। क्योंकि जन्मदिन होता है हर साल, उम्र बढ़ती है, लेकिन मन कहता है कि हम तो अभी भी बच्चे हैं।

गाने सुहाने ये कार्यक्रम आप इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है इसे और कार्यक्रम का अगला गीत इस ब्रेक के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: कार्यक्रम गाने सुहाने, सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहे हैं, ऑफिस कॉलेज या स्कूल की तैयारी हो रही है, घर के कामकाज की है भाग दौड़, लेकिन साथ में एंजॉय कीजिए आप इस म्यूजिकल प्रोग्राम गाने सुहाने को, जिसमें लग रहा है मस्ती का तड़का। दोस्तों कभी आपने गौर किया है कि दिल दुनिया का सबसे बड़ा रूल ब्रेकर है? दिमाग कहता है थोड़ा संभल कर, लेकिन दिल कहता है अरे यार जीने का मजा भी तो कोई चीज़ है। कभी अचानक कहीं घूमने का मन करता है, कभी बेवजह मुस्कुराने का मन करता है, तो कभी बिना किसी खास वजह के बस खुश रहने का मजा करता है। वैसे भी जिंदगी किसी सिलेबस की तरह थोड़ी है कि सिलेबस के हिसाब से उसे चलाया जाए। कभी कभी थोड़ा सा पागलपन, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बेफिक्री बहुत ज़रूरी है।

0: सुनो सखी सुनो सखी सुनो सखी भाई सुनो सखी,
1: क्या सुनना है,
2: क्या सुनाना है।
1: सोमवार को हिमाचली संस्कृति की बात हम करेंगे, जिसमें रंग बिरंगे रंगों में ढलेंगे।
3: मंगलवार को फोन इन महिला महफिल सजेगी, जिसमें बात करने के लिए सखियां स्टूडियोज में कॉल करेंगी।
4: ग्लैमर गलियारा होगा बुधवार का दिन हमारा, जिसमें दिखेगा खूबसूरती का नजारा।
3: जब वीरवार को होगी मिंजरा में बात, पहाड़ी झलक और मिट्टी की महक होगी साथ।
0: शुक्रवार को होगा कार्यक्रम उड़ान, जहां महिलाएं बनाएंगी अपनी खास पहचान।
4: आएगा दिन शनिवार, उसमें झलकेगा माँ बेटी का प्यार।
1: रविवार को होगा बच्चों का संग, जिसमें सजेगा बाल सभा का रंग।
0: सुना सखी सब सुना सखी
5: हाँ।

अंडर 3.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं, हम किसी भी माहौल में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी बैठे हों, पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, और पैर ना थिरकें तो हमारी गर्दन हिलने लगती है और पैर अपने आप थाप देने लगते हैं। अब ऐसा ही एक गीत जिसे सुनते ही आप खुद को थिरकने से रोकने

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
2: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम। जी हाँ दोस्तों, बातें कम हो भी क्यों, मुझे कौन सा बातों के लिए लाइसेंस की जरूरत है। मुझे चाहिए बस मूड, और मूड है आज एकदम मस्त। मौसम है गपशप वाला और दिल कह रहा है थोड़ी सी बातें और हो जाएं। वैसे भी दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें किसी बड़ी अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अपनों के साथ की गई छोटी छोटी बातों से बनती हैं। कभी डाइनिंग टेबल पर, कभी छत पर, कभी चाय की प्याली के साथ, और कभी यूं ही बेवजह। तो अगर इन दिनों आपकी किसी अपने से बात नहीं हुई है, आपने उसे फोन नहीं किया है, तो आज कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते बातों से ही महकते हैं। और अब बातों बातों में वक्त आ गया है उस गाने को सुनने का जो कहता है, दिल खोलो मुस्कुराओ और जी भर के गल्ला कर लो।

दोस्तों अभी आप एंजॉय कर रहे थे गाने सुहाने प्रोग्राम आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने इसे ट्यून किया है। सुबह के 9 बजे हैं, अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम गीतांजलि लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम और बातें कम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं बातों के जरिए हम आपके दिलों तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। ऐसे ही दोस्तों कुछ आवाजें होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, दिल में घर बना लेती हैं। कुछ गायक सिर्फ गाते नहीं बल्कि हमारी यादों, हमारे प्यार, हमारी खुशियां, हमारे एहसासों और हमारे सपनों को सुर दे जाते हैं। आज का गीतांजलि कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसी जादुई आवाज को, उस आवाज को जिसने हजारों गीत गाए और 40,000 से अधिक गीत गाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसने दक्षिणी भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी गायकी का परचम लहराया। जी हाँ, हम आज याद करेंगे स्वर सम्राट एसपी बाला सुब्रमण्यम को, जिन्हें प्यार से पूरी दुनिया एसपीबी कहती है। तो आइए 10 बजे तक का ये सफर आप हमारे साथ तय करेंगे एसपी बाला सुब्रमण्यम की खूबसूरत आवाज के साथ। एक दूजी के लिए फिल्म का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये खूबसूरत सा संगीत आनंद बख्शी के बोल हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम का साथ निभा रही हैं लता मंगेशकर।

दोस्तों, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज़ बहुत ही रोमानी आवाज़ है, ना कोई बनावट ना कोई दिखावा, बस दिल से निकला हुआ सुर जो सीधे दिल तक पहुंचता था। मजेदार बात ये थी कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े गायकों में गिने जाएंगे। इंजीनियर बनने का सपना लेकर पढ़ाई कर रहे इस युवक को शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत उनके लिए सुरों का इतना बड़ा आसमान तैयार कर रही है। और जब किस्मत सुरों से दोस्ती कर ले तो फिर दिल दीवाना जैसे गीत जन्म लेते हैं।

0: प्रोग्राम गीतांजलि में अब वक्त है एक ब्रेक का।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम गीतांजलि और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गायक कलाकार SP बाला सुब्रमण्यम के बारे में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, अपनी होस्ट एंड दोस्त मैं हूँ आरजे नीलम और जिसकी बातें नहीं होती कम, आज भी हम ढेर सारी बातें आपके साथ कर रहे हैं और साथ ही साथ फिल्मी गीतों से आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। श्रोताओं, कुछ गायक सिर्फ गाने नहीं गाते बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को आवाज़ बन जाते हैं। जब फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई तब एक तरफ सलमान खान रातों रात स्टार बन गई, दूसरी तरफ SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ पूरे देश की धड़कन बन गई। कई लोगों को तो सालों तक यही लगता रहा कि सलमान खान खुद गाते हैं, उनकी आवाज़ SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ सलमान खान पर बहुत ज़्यादा सूट करती थी। ये किसी भी पार्श्व गायक के लिए बहुत बड़ी तारीफ की बात है और अब सुनते हैं उन्हीं का गाया गीत। 100 डेज फिल्म का ये गीत है। SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की बेहद खूबसूरत आवाजें, दिलीप ताहिर के बोल, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: कार्यक्रम गीतांजलि के बाकी गीत श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जो वृद्ध है अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से गुजरात के अहमदाबाद में होगी आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिरकत। शिमला शहर सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़ कम करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए अलग ब्रांड बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी बिक्री। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 250 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ। हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के 43 सीमावर्ती गांवों में हो रहा आयोजन। और कांगड़ा जिला में औषधीय फसल ब्रह्मी खेती से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। शिमला शहर, प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों में भीड़ कम करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान शिमला शहर में भीड़ कम करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई, जिससे भीड़ भाड़ वाले चिन्हित स्थानों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को उचित निर्देश दिए गए हैं। समिति ने शहर के भीतर ट्रैफिक में अवरोध और भीड़ का कारण बनने वाली मंडियों को शिमला के बाहर नवनिर्मित 4-लेन सड़क मार्ग पर स्थित उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा की। बैठक में बीबीएन क्षेत्र में एक नई टाउनशिप योजना और चंडीगढ़ शहर की तर्ज पर एक सैटेलाइट टाउन की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भूमि पूलिंग नीति को पंजाब जैसे अन्य राज्यों के अनुरूप करने के निर्णय पर विचार किया गया। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते 73,000 से अधिक किसान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि किसानों ने प्राकृतिक खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 732 किसानों ने 6,40,00,000 रुपये मूल्य की गेहूं और मक्की की फसल की खरीद की गई है, जिसमें इस वर्ष 4 गुना से अधिक वृद्धि की उम्मीद बनी है। चंद्र कुमार ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों के लिए अलग ब्रांड विकसित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित बड़े विपणन नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि प्रदेश के ये उत्पाद देश विदेश के लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से पहुँचाए जा सके। ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता और संस्कृति विशेषज्ञ सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। उपमंडल नादौन के बल्ह डूहक गांव की अनु ने सिलाई कढ़ाई के हुनर को आजीविका का साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पुरानी सिलाई मशीन से शुरू हुआ उनका सफर आज उन्हें प्रतिमाह 10,000 से 12,000 रुपए की आय दिला रहा है। अनु अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: यदि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो सीमित संसाधनों से भी आत्मनिर्भरता की राह बनाई जा सकती है। उपमंडल नदौन के बल्डू गांव की अन्नु ने सुई धागे के हुनर से ही इस बात को सच साबित कर दिखाया है कि घर की जिम्मेदारियों के बीच अन्नु ने सिलाई के हुनर को अपनी आजीविका का साधन बनाया और आज इसी काम से हर महीने 10,000 से 12,000 रुपए की आय अर्जित कर रही है। अन्नु ने न केवल खुद आत्मनिर्भरता बनी है, बल्कि गांव के अन्य महिलाओं और लड़कियों को भी सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। त्योहारों और शादियों के सीजन में उनके पास काम की इतनी मांग रहती है कि समय निकालना ही मुश्किल हो जाता है। अन्नु की ये पहल न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: धर्मगुरु दलाई लामा को संगीत की दुनिया के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान ने मैक्लोडगंज में प्रदान किया। ये अवार्ड उन्हें ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला है। इस ऑडियो बुक में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ करुणा, शांति और मानवता की एकता के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNewsShimla_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। युवा मामले व खेल मंत्रालय ने मेरा भारत युवा के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। ये एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें भाग लेने के लिए कुल 500 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। विभिन्न राज्यों से चयनित इन स्वयंसेवकों को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में दो चरणों में तैनात किया जा रहा है। प्रथम चरण में 250 स्वयंसेवक 43 गांवों में गहन गतिविधियों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जबकि शेष 250 स्वयंसेवक इस महीने के अंत तक 50 गांवों में द्वितीय चरण की गतिविधियों में शामिल होंगे। कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल के घानक गांव की महिलाएं औषधीय फसल ब्राह्मी की खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही है। ये पहल अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल के घानक गांव की महिलाएं औषधीय फसल ब्रह्मी की खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। CSIR IHBT के तकनीकी सहयोग से शुरू हुई ये पहल अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुकी है। तकनीकी मार्गदर्शन मिलने के बाद स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने छोटे स्तर पर इसकी खेती शुरू की। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद उन्होंने प्रयास जारी रखे और आज ब्रह्मी गाँव की पहचान बन चुकी है। महिलाएं अब ब्रह्मी की खेती के साथ साथ इसके मूल्य वर्धित उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। ब्रह्मी से कैंडी, शरबत, स्वास्थ्य वर्धक पेय और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं जिन्हें बाजार में अच्छी मांग मिल रही है। महिलाओं की इस पहल को बाजार से भी अच्छा समर्थन मिला है। स्थानीय स्तर पर खरीद की व्यवस्था बनने के बाद उत्पादन लगातार बढ़ा है। ताजा ब्रह्मी 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जबकि सूखी ब्रह्मी का मूल्य 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच जाता है। आज धानक गाँव की ब्रह्मी हरियाणा समेत कई राज्यों में भेजी जा रही है जहां इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं, शरबत और स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। बढ़ती मांग के चलते अधिक महिलाएं इस खेती से जुड़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत व जिला परिषद चुनावों के सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा 30 जून तक निर्वाचन आयोग को देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए ये ब्यौरा अनिवार्य किया है। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है जिसमें आयोग भविष्य के लिए इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। HP शिवा परियोजना के तहत बागवानों को प्लम की खेती से जोड़ने का प्रयास सफल रहा। मंडी जिले के ब्रह्ममुखी और खग्रांगो क्लस्टर में इस वर्ष प्लम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है जिससे बागवानों की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बागवानी विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधा और बाजार से जोड़ने में सहायता की जा रही है जिसके तहत महाराष्ट्र की एक एग्री सप्लाई कंपनी के जरिए बल्ह और सुंदरनगर क्षेत्र के बागवानों द्वारा उगाया गया उच्च गुणवत्ता वाला प्लम महाराष्ट्र के बाजारों तक पहुंचाया गया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, सोलन में मेयर पद ओपन। पिछली बार नगर निगम सोलन व धर्मशाला में मेयर पद महिला, मंडी, पालमपुर में थे अनारक्षित। दैनिक जागरण लिखता है, 4 नगर निगमों में मेयर पद अनारक्षित, 5 वर्ष होगा कार्यकाल। पंजाब केसरी के शब्द है, पंजाब जाने वाले हिमाचल के सभी वाहनों से वसूले 10 से 100 रुपए। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ समारोह पर दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, सोमवार तक होगी जिला परिषद BDC की शपथ, पंचायतों के लिए अभी CM के फैसले का इंतजार। दैनिक भास्कर की एक खबर है, हिमाचल हाईकोर्ट को मिलने जा रहे 3 नए जज। हिमाचल दस्तक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा व योगेश जायसवाल के नाम किए फाइनल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से गुजरात के अहमदाबाद में होगी आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिरकत। शिमला शहर सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़ कम करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए अलग ब्रांड बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी बिक्री। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 250 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ। हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के 43 सीमावर्ती गांवों में हो रहा आयोजन। और कांगड़ा जिला में औषधीय फसल ब्रह्मी की खेती से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
3: पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि के बाकी के गीत। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। घड़ी में समय हुआ है 9:31 और 38 सेकंड। अभी आप शिमला से समाचार सुन रहे थे और एक बार फिर हम लौटते हैं खूबसूरत सफर की ओर, जो समर्पित है कैसी आवाज को जिसे सुनते ही न जाने कितनी यादें जाग उठती हैं। SP बालासुब्रमण्यम, ऐसा एक ऐसा नाम जिसने हर एहसास को अपनी आवाज दी। प्यार हो, दोस्ती हो, इंतजार हो या मुस्कुराहट, हर रंग उनके गीतों में मिलता है। वो बेशक हमसे दूर हो गई, लेकिन उनकी आवाज कभी भी हमसे जुदा नहीं होगी।

दोस्तों, कुछ आवाज़ों की उम्र नहीं होती, वो हर दौर में नहीं लगती हैं। जरा सोचिए, 90 के दशक में जब किसी ने पहली बार इन गीतों को सुना होगा और आज वही गीत कोई युवा अपनी प्लेलिस्ट में सुन रहा है। बीच में साल बदल गए, दौर बदल गए, म्यूजिक का स्टाइल बदल गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है SP बाला सुब्रमण्यम का ये जादू। और वही जादू आज बिखेर रहे हैं हम प्रोग्राम गीतांजलि में। गीतांजलि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: दोस्तों, संगीत की दुनिया में रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिनके सामने समय भी ठहर जाता है। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपने करियर में 40,000 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। जरा कल्पना कीजिए, अगर रोज एक गीत भी हम सुने तो सारे गीत सुनने में सालों लग जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद उनमें कभी अहंकार नहीं आया। उनकी मुस्कान, उनका अपनापन और उनका विनम्र स्वभाव उन्हें और भी बड़ा बना देता है। कार्यक्रम गीतांजलि में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
4: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से और 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने इसे ट्यून किया है। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट इंदो सारजे नीलम के साथ और श्रोता, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गायक कलाकार एसपी बाला सुब्रमण्यम के बारे में। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित है। दोस्तों, कहते हैं एक अच्छा गायक सुरों को गाता है लेकिन महान गायक शब्दों में जान डाल देता है। एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब जब कोई रोमांटिक गीत गाते थे तो लगता था जैसे कोई प्रेमी अपने दिल की बात कर रहा है। जब दर्द भरा गीत हो तो ऐसा महसूस होता था जैसे हर शब्द आंखों से होकर गुजर रहा है। शायद इसी वजह से उनके गीत आज भी अपने से लगते हैं और सदाबहार नए से लगते हैं।

0: लिंकिंग रोड कभी वार्डन रोड, डंकन रोड लैमिंगटन रोड, कैडल रोड कभी पेडर रोड, चर्नी रोड कभी अर्थर रोड, टर्नर रोड कभी कार्टर रोड।
1: दोस्तों कार्यक्रम गीतांजलि का आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से और एसपी बाला सुब्रमण्यम पर केंद्रित है हमारा आज का ये कार्यक्रम। आज के दौर में हम एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए हजारों टेक लेते हैं, ऑटो ट्यून लगाते हैं, एडिटिंग करते हैं, लेकिन एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब उन कलाकारों में थे जो स्टूडियो में आते थे, मुस्कुराते थे, कई बार एक ही टेक में कमाल कर जाते थे। शायद इसीलिए उनकी आवाज में तकनीक से ज्यादा सच्चाई सुनाई देती है। साल 2020 में जब एसपी बाला सुब्रमण्यम इस दुनिया से अलविदा कह गए तब पूरे देश की आंखें नम थी, लेकिन कलाकार कभी विदा नहीं होते, वे अपने गीतों में जीवित रहते हैं। वो हमारे बीच भले ही आज मौजूद नहीं, लेकिन उनके गीत अब भी मुस्कुराते हैं, प्यार करना सिखाते हैं, दिलासा देते हैं, यादों को जगाते हैं, और शायद यही किसी कलाकार का अमर हो जाना होता है।

श्रोतो, आज का कार्यक्रम गीतांजलि अ ट्रिब्यूट टू एसपी बालासुब्रमण्यम कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम के साथ, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह, कार्यक्रम आप तक पहुंचा सुनील शर्मा के तकनीकी सहयोग से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां।

सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो दोस्त सचिता और हाजिर हूं लेकर गीतों का कारवां। जी हां श्रोताओं, गीतों का एक ऐसा सुहावना सफर जहां पर आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो हो जाइए तैयार हमारे साथ इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए अब से लेकर ठीक 10:30 तक। सुनिए आज के इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
2: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
2: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
2: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
3: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
4: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
5: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
6: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: इस ब्रेक के बाद फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम है गीतों का कारवां और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार होता है। प्यार जो हमारी बेरंग जिंदगी में रंग भर देता है।

कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों में देवदास फिल्म का गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, गीतों का कारवां, इस कारवां को यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। 10:30 हुए हैं श्रोताओं, और अब समय है कार्यक्रम पहाड़ों के सुर की। हिमाचली गीतों और लोक गीतों के इस कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में आप सभी श्रोताओं का

कश्मीरी राम और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये लोकगीत सुना। अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं अशोक कुमार और साथियों की आवाजों में।

पहाड़ों के सुर ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं ओम प्रकाश व साथियों की आवाजों में।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओ, अभी आपने प्रदीप परदेसी और फौजा सेन की आवाजों में ये लोकगीत सुना। अगला लोकगीत आपको सुनवा रही है कुशल कुमार की आवाज में।

इसी लोकगीत के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। शिमला शहर, प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और मुख्यालयों में भीड़ कम करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान शिमला शहर में भीड़ कम करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें भीड़ भाड़ वाले चिन्हित स्थानों को की समीक्षा कर संबंधित विभागों को उचित निर्देश दिए गए। समिति ने शहर के भीतर ट्रैफिक में अवरोध और भीड़ का कारण बनने वाली मंडियों को शिमला शहर से बाहर नवनिर्मित फोरलेन सड़क मार्ग पर स्थित उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा की। बैठक में BBN क्षेत्र में एक नई टाउनशिप योजना और चंडीगढ़ शहर की तर्ज पर एक सैटेलाइट टाउन की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भूमि पूलिंग नीति को पंजाब जैसे अन्य राज्यों के अनुरूप तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते 73,000 से अधिक किसान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि किसानों में प्राकृतिक खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 732 किसानों से 6,40,00,000 रुपये मूल्य की गेहूं और मक्की की फसल की खरीद की गई थी, जिसमें इस वर्ष 4 गुना तक वृद्धि की उम्मीद है। चंद्र कुमार ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों के लिए अलग ब्रांड विकसित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित बड़े विपणन नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि प्रदेश के ये उत्पाद देश विदेश के लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाए जा सके। युवा मामले व खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। यह एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम 2 चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने के लिए देश भर से कुल 500 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है, जिनमें से पहले चरण में 250 स्वयंसेवकों को हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में 2 चरणों में तैनात किया जा रहा है। किन्नौर जिला में 10 दिनों के लिए आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 100 युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जहां आज ITBP परिसर रिकांगपियो में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन के बल्ह डूहक गांव में अनु ने सिलाई कढ़ाई के हुनर की आजीविका का साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पुरानी सिलाई मशीन से शुरू हुआ उनका ये सफर आज उन्हें प्रतिमाह 10,000 से 12,000 रुपए की आय दिला रहा है। अनु अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रही है। जिला हमीरपुर से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: यदि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो सीमित संसाधनों से भी आत्मनिर्भरता की राह बनाई जा सकती है। उपमंडल नदौन के बल्डू गांव की अन्नु ने सुई धागे के हुनर से ही इस बात को सच साबित कर दिखाया है कि घर की जिम्मेदारियों के बीच अन्नु ने सिलाई के हुनर को अपनी आजीविका का साधन बनाया और आज इसी काम से हर महीने 10,000 से 12,000 रुपए की आय अर्जित कर रही है। अन्नु ने न केवल खुद आत्मनिर्भरता बनी है, बल्कि गांव के अन्य महिलाओं और लड़कियों को भी सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। त्योहारों और शादियों के सीजन में उनके पास काम की इतनी मांग रहती है कि समय निकालना ही मुश्किल हो जाता है। अन्नु की ये पहल न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद चुनावों के सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा 30 जून तक निर्वाचन आयोग को देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए ये ब्यौरा अनिवार्य किया है। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें आयोग भविष्य के लिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। एचपी शिवा परियोजना के तहत बागवानों को प्लम की खेती से जोड़ने का प्रयास सफल रहा है। बागवानी विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधा और बाजार से जोड़ने में सहायता दी जा रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र की एक एग्री सप्लाई कंपनी के जरिए बल्ह और सुंदरनगर क्षेत्र के बागवानों द्वारा उगाया गया उच्च गुणवत्ता वाला प्लम महाराष्ट्र के बाजारों तक पहुँचाया गया है, जहाँ उन्हें इस फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11:06 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में श्रोताओं, सबसे पहला ये पंजाबी गीत आपको सुनवा रहे हैं जसविंदर नरूला की आवाज में।

महक पंजाब दी ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब आपको सुनवा रहे हैं गुरदास मान का गाया ये पंजाबी गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आपने ये पंजाबी गीत सुना, इस गीत को गाया था अमरिंदर गिल ने।
1: सब तो महंगी हुंदी मासूमी।
0: कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं सतिंदर सरताज का गाया ये पंजाबी गीत।

श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं आपके सुझावों और शिकायतों पर आधारित कार्यक्रम आप और हम इस बार रिकॉर्डिंग पर आधारित रहेगा। रिकॉर्डिंग के लिए आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। यदि आप हमारे प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं या अपनी शिकायत एवं प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं तो कल दोपहर 1:15 से लेकर 1:45 तक आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रमों को और भी अधिक रोचक, उपयोगी और श्रोताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सहायता करते हैं। तो श्रोताओं याद रखिए, कल दोपहर 1:15 से लेकर 1:45 तक आप हमें इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है आप और हम, में फ़ोन कर सकते हैं और अपने सुझाव और शिकायतें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर रहेगा 01892-224391। तो श्रोताओं हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 11:30 हुए हैं। अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
2: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
2: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
2: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ जरूर कीजिए।
2: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
2: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
2: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
2: बिल्कुल।
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
2: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ?
2: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
2: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
2: जी,
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
2: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
2: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
2: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
2: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
2: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
3: भारत अर्थात इंडिया।
4: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच। अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
4: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
5: सर।
6: तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। आ जाओ शाबाश।
5: क्या अभी आपके पास समय होगा?

0: इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
0: 5000 वर्ष पहले?
1: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
0: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
2: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
1: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
0: अच्छा।
1: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
2: जैसे?
1: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
2: वैदिक समूह?
1: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
0: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
1: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
2: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
1: हाँ।
2: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
0: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
1: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
2: वो क्या सर?
1: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
0: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
2: भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
2: है ही नहीं?
1: हाँ।
2: ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
2: ओ।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
0: हिंदू।
1: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
2: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल।
0: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
2: अच्छा।
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत वर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
2: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारत वर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
2: जम्बूद्वीप?
1: हाँ।
2: ये नाम भला क्यों?
1: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, सम्राट अशोक ने भी

0: अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओह,
0: हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
7: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
8: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
7: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
8: हाँ पूछो बेटा।
7: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
8: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
6: लेकिन माँ,
8: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
7: जी
8: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
7: अच्छा माँ, ये लो माँ।
8: ला।
6: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
7: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
8: क्या मिल गया
7: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
8: क्या मिल गया? क्या मिल गया
7: मुझे? मिल गया।
6: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
8: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
7: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
6: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
7: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
8: कुछ हाँ? भी तो नहीं।
6: कुछ भी तो नहीं है।
7: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
6: वो तो है मगर
7: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
6: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
7: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
6: हाँ।
7: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
6: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
7: ठीक है, आओ मेरे साथ।
8: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
5: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
9: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
10: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
9: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
10: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
9: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
10: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
9: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
10: भाई साहब हट जाइए। हाँ आ गए, आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
7: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
10: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। हाँ? वो देखो टोकरे में। हाँ
7: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
10: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
7: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
10: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
7: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
10: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
7: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
10: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
7: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
10: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
7: अरे अरे वो पेड़ों की तरफ, अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
5: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।
11: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
12: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले फिल्म दीवार से ये देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं रूप कुमार राठौर और उदित नारायण की।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में कूली नंबर 1 फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: सुनो सखी भाई।
1: क्या सुनना है,
2: क्या सुनाना है?
1: सोमवार को हिमाचली संस्कृति की बात हम करेंगे, जिसमें रंग बिरंगे रंगों में ढलेंगे।
3: मंगलवार को फोन इन महिला महफिल सजेगी, जिसमें बात करने के लिए सखियां स्टूडियोज में कॉल करेंगी।
4: ग्लैमर गलियारा होगा बुधवार का दिन हमारा, जिसमें दिखेगा खूबसूरती का नजारा।
5: जब वीरवार को होगी मिंजरा में बात, पहाड़ी झलक और मिट्टी की महक होगी साथ।
6: शुक्रवार को होगा कार्यक्रम उड़ान, जहां महिलाएं बनाएंगी अपनी खास पहचान।
7: आएगा दिन शनिवार, उसमें झलकेगा माँ बेटी का प्यार।
1: रविवार को होगा बच्चों का संग, जिसमें सजेगा बाल सभा का रंग।
0: सुना सखी, सब सुना सखी।
8: हाँ।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। इस रविवार दिनांक 7 जून सन 2026 को प्रसारित किए जाने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा बच्चों में कुपोषण, कारण, लक्षण और बचाव। इस विषय से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए हमारे स्टूडियोज में उपस्थित होंगे डॉक्टर प्रदीप अत्री। आप हमें सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक इस कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाएं व प्रश्न पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, अनोखा अंदाज फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं के सुझावों और शिकायतों से संबंधित कार्यक्रम आप और हम इस बार रिकॉर्डिंग पर आधारित रहेगा। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग के लिए आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। यदि आप हमारे प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं या अपनी शिकायत एवं प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कल यानी 5 जून 2026 शुक्रवार को दोपहर 1:15 से लेकर 1:45 तक आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर 01892224391। श्रोताओं, आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रमों को और भी अधिक रोचक, उपयोगी और श्रोताओं की अपेक्षा अनुसार बनाने में सहायता करते हैं। तो याद रखिए, कल शुक्रवार दोपहर 1:15 से लेकर 1:45 तक कार्यक्रम आप और हम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें अवश्य कॉल करें। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। सैनिक भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना साप्ताहिक कार्यक्रम मिंजरा।

स्वागत सारे श्रोता सखियों का कार्यक्रम मिंजरां च। पणो अज्ज दे इस कार्यक्रम विच असां तुहाडे कन्ने तो साडी अपनी रेडियो सखी माया सारे श्रोता सखियों जो साडी तरफी ते प्यार भरी राम राम। पणो अज्ज 4 जून है ते 4 जून जो यानी अज्ज दे दिन जो हिंसा दे शिकार निर्दोष बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में जड़ा सा मनाया जाता है। अज्जे दे दिन जो मनाने का मुख्य उद्देश्य उन्हां बच्चों के प्रति सहानुभूति ते समर्थन व्यक्त करना है जिहड़े आतंकवाद घरेलू हिंसा शोषण उत्पीड़न ते दूजी किसी भी हिंसात्मक घटनाएं दे शिकार हुआ करते हैं। अज का दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने ते उन्हां दे सुरक्षित भविष्य वास्ते वैश्विक स्तर पर प्रयास करने का संदेश दिंदा है। दिखा बच्चे किसी भी राष्ट्र के भविष्य होंदे हन। उन्हें जो सुरक्षित वातावरण शिक्षा स्वास्थ्य ते एक प्यार भरा जीवन जीने का अधिकार है, पर दुनिया के कई हिस्सों च युद्ध की वजह कन्ने बच्चे अज भी हिंसा युद्ध ते अत्याचार का सामना जड़े इनसे करा करते हैं ते इन्हां बच्चों की समस्याएं जो उजागर करने ते उन्हां दी अधिकारां दी रक्षा करने वास्ते अज का दिन महत्वपूर्ण भूमिका जड़ा से निभांदा है। हिंसा चाहे किसी भी तरीके की हो बच्चों के शारीरिक मानसिक ते भावनात्मक विकास जो प्रभावित कर दी। जिहड़े बच्चे हिंसा के शिकार हुआ करते हैं उन्हां दे अंदर डर तनाव असुरक्षा ते आत्मविश्वास की कमी दिखने जो मिलती है। इस कन्ने उन्हां दी शिक्षा ते भविष्य पर बुरा प्रभाव पौंदा। बच्चों जो हिंसा का बचाने वास्ते परिवार समाज ते सरकार अस सबना जो मिली जुली करी काम करना चाहिदा। बच्चों जो उन्हां दे अधिकारां दे प्रति जागरूक करना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना ते बाल संरक्षण कानूनों का पालन करना जड़ा से जरूरी है ते असा सबना जो मिली करी एक इदिया समाज बनाना चाहिदा जिथों कोई भी बच्चा हिंसा का शिकार ना हो। क्योंकि हर बच्चे जो सुरक्षित ते सम्मानजनक जीण जीने का अधिकार है ते असा सबना जो उन्हां दे इस अधिकार की जिहड़ी असे रक्षा करना चाहिए। तो यह तो गल्लां होईयां अज दे दिवस पर हुण असा कार्यक्रम विच अगे बढ़ना ते सुनना एक प्यारा दिया लोक गीत।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: एक बारी फिर स्वागत असदीय श्रोता सिखेंदा कार्यक्रम मिंजरंच। भैनों, कई जगह घरेलू हिंसा जड़ी से बच्चों के कन्ने कन्ने महिलाएं दे कन्ने भी होंगी, पर दिखा घरेलू हिंसा जड़ी से कुसी कन्ने भी हो सकती है ना। इस खातर हिंसा पर रोक लगाना जड़ा से बड़ा जरूरी है। ग्रामीण इलाकों की गल करन या शहरी क्षेत्रों की गल करन, अज भी महिलाएं कुतू कुतू घरेलू हिंसा के शिकार जड़ी से हुआ कर दी हैं। तो दिखा घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जड़ी परिवार ते समाज दोनों जो प्रभावित कर दी। यह हिंसा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ते आर्थिक रूप च भी हो सकती। इस कन्ने महिलाएं, बच्चों ते बजुर्ग जो सबना का ज़्यादा जड़ा से नुकसान हुंदा। इस खातर इसो रोकना असा समाज च रिया करदे हर मनु दी जड़ी से जिम्मेदारी है। हिंसा दे कई कारण हो सकते, जिवें कि अशिक्षा, नशाखोरी, ज़्यादा गुस्सा, आपसी समझ की कमी, सामाजिक कुरीतियाँ ते महिलाएं दे प्रति भेदभाव पूर्ण सोच भी हो सकती। ते ग्रामीण इलाकों च हल्ली भी कुथ कुथ महिलाएं जो अपने अधिकारां दी, कानूनां दी पूरी जानकारी जड़ी से नहीं होने दी वजह कन्ने औरतां कन्ने घरेलू हिंसा उन्हां जो जड़ी से सहन करना पौंदी या सहन जड़ी से करा करदे हन। अगर कुसी कन्ने इहदी कोई समस्या है तां से अपनी कुसी भी मना जड़ी बड़ी अच्छी तिना दी कोई सखी सहेली है तिना जो अपने बारे से दसी सकदी या कुसी अपने जो जड़े से अपने गल्ला जड़ी से दसी सकदी हैं, ताकि कोई एक रास्ता मिले कने घरेलू हिंसा का तिना जड़ी से निजात मिले। दिखा घरे दी जनासा जड़ी इनसे जितनी भी खुश रहेंगी, उन्हें जो जितना प्यार सम्मान मिलगा से उतने ही खरे तरीके कन्ने घर जड़ा से बच्चों जो संभाल दियाँ, अपने न्याणियों की परवरिश जड़ी से सही कन्ने कर दियाँ, उन्हें जो मानसिक तनाव जड़ा से उस बिल्कुल नहीं होंदा, उन्हें दा आत्मविश्वास बनिया रहिंदा ते मानसिक ते शारीरिक रूप च भी उन्हें सेहत जड़ी से खरी रहिंदी। पर अगर घरे च ही महिलाएं जो दुख, तकलीफ या गल्ला गल्ला प्रति प्रताड़ना सहन करना पौंदी, तो उन्हें दा आत्मविश्वास जड़ा सह भी घट जाता। से अंदर का डरी डरी करी और अपना जीवन जड़ी इनसे जींदी है, उन्हें मानसिक ते शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पौंदा ते परिवार च अशांति ते तनाव दा वातावरण जड़ा सह भी बनया रहिंदा है। इस खातिर घरेलू हिंसा असा कुसी महिलाएं कन्ने ना हो, इस वास्ते हर औरत दा जागरूक होना जड़ा से बड़ा जरूरी है, अपने पैरों पर खड़ोना जरूरी है। आत्मविश्वास, शिक्षा ते आर्थिक निर्भरता महिलाएं जो जड़ी इनसे मजबूत बनांदी हैं। तो जरूर कोशिश करनी बाहर निकल के कुछ करने ते ही, अगर तो पढ़े लिखे हैं तो नौकरी कर सकते, या होर कोई भी अगर काम तो जो रुचि है तो उस काम जो करी के चार पैसे जड़े इनसे कमाई सकती है ना। इस कन्ने भी जड़ा सा अपना जीवन खुशी कन्ने जी सकती हैं। तो अगर असा इसी बारे च होर भी जानकारी जड़ी इनसे अपनी सखियां कन्ने सांझा करनी है, पर फिर सुनना एक होर प्यारा दिया लोक गीत।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: देखा, आज दा युग आधुनिकता ते प्रगति दा युग है। आज हर महिला कोई ना कोई काम करके 4 पैसे जड़ीन से जरूर कमाया करती हन। इस कन्ने महिलाएं जो पैसे वास्ते परिवार दे दूजिया मनुआ पर निर्भर जड़े से बिल्कुल नहीं होना पौंदा। इस खातिर करे का बार निकली करी असां दीआं ग्रामीण

भी हर क्षेत्र च अगे होआ करदी है। अज अपने वास्ते जीना भी जरूरी है। असां महिलाएं परिवार की देखभाल करते करते घरे के काम करते करते अपनी सारी जिंदगी संघर्ष करती हैं, पर घर परिवार के कन्ने कन्ने अपनी खुशी वास्ते भी कुछ काम जरूर करने चाहिए। नहीं तो अक्सर घर परिवार पटाते पटाते असा अपना जीण जीना जिहड़ा से अपने वास्ते कुछ करना सब कुछ भूली जाती। जितना घर परिवार जरूरी है उतना ही अपनी खुशी वास्ते जीना जिहड़ा से भी बड़ा जरूरी है। गलत ना करना चाहिए, कोई गलत करे तो उसको जरूर उसकी गलती जी असें दसना चाहिए, उसको उसकी गलती का एहसास जरूर करवाई सकते। पहले जनासा दी भूमिका देखा करे तो कि सीमित थियाँ लगभग, पर अज महिलाएं घर भी संभाला करती हैं तो बाहर नौकरी भी करा करती हैं, व्यवसाय भी करा करती हैं। असा दियाँ ग्राएं दियाँ भैणा भी सिलाई बुनाई करके या होर कोई काम करके चार पैसे जड़े इनसे कमा दिए हैं, पढ़िया लिखे हैं तो नौकरी करा कर दी है ना। यानी कि आज महिलाएं आर्थिक रूप से जड़ी से अपने आप जो मजबूत बनाया कर दी हैं, इस कन्ने उन्होंने जीने च खुशी भी हुआ कर दी है। तो असा सारे दे जीने च खुशी का जड़ा से देखा बड़ा महत्व है। खुश रहने कन्ने असा जीण जड़ा से सुखमय तो स्वस्थ बनता। जड़ा इंसान अपने आप खुश रहा सह दूजे जो भी खुश रखता। तो जलू असा सारे खुश रहेंदे अपने आसे पासे जड़े से खुशी बखेरते तो देखा परिवार च भी खुशी आँदी, तो हिंसा का तो लड़ाई का झगड़िया का कोई मतलब नहीं होंदा उस वक्त। इस खातिर ऐसा जो अगर लगे कि ऐसा दे अंदर कोई भी बुराई है तो ऐसा अपने आप जो अपने आप उस बुराई जो जड़े से खत्म कर सकते, अपने आप पर जो बदली सकते। हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। कोई भी अगर बुरे विचार या किसी के बारे च नकारात्मक विचार हो तो अपने आप पे जो इन विचारों का जड़ा से दूर रखना जरूरी होंगे। हर घरे च छोटी छोटी गल्लां जरूर होंगे रहिंदियां। इन्हों छोटी छोटी गल्लां कन्ने तनाव चाई जाना भी गलत है, तो उन्हों छोटी छोटी गल्लां दा बतंगड़ बनाना जड़ा सह भी गलत होंदा। हाँ, अगर ज़्यादा ही गलत हुआ करता है, गल्लां गल्लां प्रति प्रताड़ना जड़ी से दुख झेलना पुआ करते हैं सह भी गलत है ना, तो असा जरूर जड़े से इसके खिलाफ आवाज़ चकी सकती है। अज जिंदगी वैसे भी बड़ी भाग दौड़ वाली है, छोटी छोटी गल्ला जो मने कन्ने लगाना उसका बुरा मनाना भी सही नहीं होंदा भैनों। इस कन्ने असा अपनी ही भी सेहत जड़ी से खराब करते, कन्ने घरे का माहौल जड़ा सह भी खराब होंदा। कुसी जो भी घरे के सदस्य जो या बाहर कुसी जो भी दुख पुजाना अपमानित करना उस जो नीचा दिखाना भी बिल्कुल भी सही नहीं है। अपना खुशी कन्ने जीण जिया ते दूजे जो भी उन्हों का जीण जड़ा से खुशी कन्ने जीना दिया। असा जो अपने परिवार च अपनी खरी सहेलियां कन्ने प्रेम सद्भाव ते सहयोग का व्यवहार जड़ा से करना चाहिए। इस कन्ने कुसी भी मतलब कि अगर कोई होने वाले हिंसा पर जड़ी असें रोक लगती, अगर असा सबना कन्ने प्यार कन्ने गल करिए है ना और एक दूजे की इज्जत करिए तो लड़ाई झगड़े का जड़ा से कोई मतलब नहीं बनता। समाज च शांति ते भाईचारा जड़ा से बढ़ता। ताकि असा होर भी अपनी सखियां कन्ने जड़ी असें गल्लां करनी है, पर फिर सुनना एक होर प्यारा दिया लोक गीत।

0: खास बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: एक बारी फिर स्वागत है सदी श्रोता से केंद्र कार्यक्रम बिंजरें से। पहले हूँ असा गल करनी है खाने पीने की। अज असा गल करनी है लस्याड़े बनाने के बारे च। अजकल लस्याड़े आसानी के मिली जाते तो इसकी सब्जी तो अचार जड़े से जरूर असा बनाते हैं। अजकल लस्याड़े की एक पौष्टिक तो स्वादिष्ट सब्जी बनती। इस विटामिन खनिज तो रेशे जड़े इनसे प्रचुर मात्रा च पाए जाते हैं। इसकी सब्जी बनाना जड़े से बड़ा आसान है भैनों। इसकी सब्जी बनाने वास्ते इन्हें जो पहले धोई लिया फिर हाथ कन्ने तेल लगाई करी इन्हें जो चुथी करी इसकी गुठलियाँ जड़ी से निकाली करी अलग कर दिया। फिर अमचूर वाले पानी से इन्हें जो जड़े से कन्ने कन्ने पाते चलना या तो असा क्या कर सकते इसको हल्का दिया उबाली करी इसकी गुठली जड़ी है फिर निकालना तो सह भी आसान होंगे। फिर कढ़ाई तेल सरिया का तेल पाना तेल जालू गर्म हो जाएगा तो बीन जीरा हींग हल्दी लून सब कुछ अपने हिसाबे कन्ने जड़े से पाई देना यानी थोड़ा देर जालू चटकी जाएगा जीरा तो लस्याड़े जड़े इनसे पाई देने खरे कन्ने मिलाए लेने कन्ने अमचूर पाना हो तो अमचूर पाई देना नहीं तो अजकल अंब लगी पे हैं अंबे जो कट्टी करी जड़ा या कद्दूकस करी के सब पाई करी जड़ा से खने कन्ने इसको पकाई लेना ढकी करी खरे कन्ने जालू तक सब्जी तेल नहीं छिड़ना लगे तालू तक जड़े इनसे इस सब्जी जो पकाई लेना। बस लस्याड़ी की सब्जी जड़ी से बनी करी तैयार है। जियाँ जियाँ ठंडी होंगी जाएगी खटाई इस रचती चलती तो इसका कसैलापन जड़ा सा भी खत्म हो जाता तो अजकल लस्याड़ी की सब्जी जड़ी इसे जरूर बनाई करी खाना चाहिए। ये स्वादिष्ट होने दे कन्ने कन्ने असां दे पाचन वास्ते जड़ी है सह भी बड़ी लाभकारी मनी जाती है। इसो घड़ी रोटी या तली रोटी कन्ने खाना हो तो होर भी जड़ी है से स्वाद लगती। सारिया भैनों का इस सब्जी जो अपने अपने घरे बनाने का जड़ा सा अलग अलग तरीका है जिया भी बनाना खरा लगता उसी तरीके कन्ने बनाई करी जरूर अजकल जड़ी से सब्जी बनाई करी खाना चाहिए है। तो गल्ला जड़ी इनसे हो गई है फिर सुन लेंदे एक होर प्यारा दिया लोक गीत।

इस लोकगीत कन्ने तुसां जो भी ए भी दस्सी दिंदे कि इस कार्यक्रम जो तुसां तक पहुँचाने वास्ते तकनीकी सहयोग दित्ता सुनील कुमार ने, प्रस्तुत करता है जतिंदर पाल सिंह ते माया जो कार्यक्रम संपन्न करने दी अनुमति दिया। प्यारी सिखियो, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 1 बजने को है अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
2: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो भाई सीमा फिल्म के इस गाने के साथ कार्यक्रम सुरीला सफ़र का आगाज हो गया है और हमारे साथी ने भी लिखा है कि बहुत ही साफ सुथरे गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि फिल्म सीमा का ये गीत मेरी लिस्ट का यानी उनकी लिस्ट का पहला गीत बच गया। तो आप सब भी अपनी अपनी लिस्ट में गाने टिक करते चलिएगा कि कौन कौन सा गाना हमारी लिस्ट के साथ मेल कर रहा है। वैसे आप गाने लिख कर भेजिए हमें, हो सकता है कि आप वाला गाना बज ही जाए। वैसे एक साथी ने लिखा है कि इस गाने में सरोद का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, फिल्म सीमा लता जी शंकर जयकिशन का संगीत। जी हाँ। और आगे एक साथी लिखते हैं कि नमस्कार किया है, लिखते हैं अगर आज की इबारत को देखा जाए तो लगता है कि आज तो गाने बहुत ही सुंदर और सुनने को मिलेंगे, आज तो बहुत आनंद आएगा। और दूसरे साथी ने लिख दिया है कि नूतन ने बिना ज़्यादा बोले सिर्फ अपनी आँखों और चेहरे के भावों से भावनाओं को व्यक्त किया। फिल्म सुजाता 1959 और बंदिनी 1963 जैसी फिल्म में उनका संवेदनशील अभिनय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यकीनन साथियों उनकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था जो बिना किसी दिखावे के सीधे दिल को छू जाता था। और उनकी खूबसूरती केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके व्यक्तित्व, विनम्रता और संस्कारों में भी झलकती थी। जैसा कि हमारे एक साथी ने उनकी आँखों के लिए लिखा है कि अपनी आँखों और चेहरे के भावों से भावनाएं व्यक्त करती थीं, तो यकीनन उनकी आँखें भावनाओं की ऐसी भाषा बोलती थीं जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रतिभा, सौम्यता और आत्मविश्वास का जो सुंदर संगम अभिनेत्री नूतन में था वो उन्हें अपने दौर की सबसे विशिष्ट अभिनेत्रियों में शामिल करता है। एक और कमेंट आया है हमारे पास कि ऐ मेरे हम सफ़र रोक अपनी नज़र, ये दिल है बड़ा बेअसर, बचपन के दिन भी क्या दिन थे उड़ते फिरते, ऐसा गाना लिखा है। इन्होंने बहुत सारे गाने लिख भेजे हैं और लिखा है कि युग युग से गीत मिलन के गाते हैं गाते रहेंगे, यानी इन्होंने नूतन जी के बहुत सारे गानों को यहाँ तक भेज दिया है। और एक साथी ने लिखा है कि मैं तो यही कहूँगी कि ब्लैक एंड वाइट का जो दौर था वो बहुत ही सुंदर था, एक श्वेत शाम दौर की फिल्मों में जो सादगी, आँखों की भाषा और ठहराव था वो आज के शोर शराबे में कहीं खो सा गया है। उस दौर की भोली सी सूरत और गहरी आंखें बिन कुछ कहे भी सब कुछ कह जाती थीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। वैसे आप बताइएगा, आप सब साथी, कि आपको ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में ज़्यादा अच्छा लगता है फिल्में देखना या रंगीन, और नूतन जी की कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बेहद करीब है। एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के स्वर्णिम युग में नूतन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी सादगी, प्राकृतिक अभिनय और सशक्त किरदारों ने उन्हें उस दौर के दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया था। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थीं बल्कि उन्होंने अपनी आवाज़ और आँखों के भावों से हर किरदार में जान डाल दी। उन्होंने बिना किसी लाउड मेकअप या ड्रामे के केवल अपने संजीदा अभिनय से ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के पर्दे पर अपनी एक अमित छाप छोड़ी। बिल्कुल सही बात है। और उदाहरण है उनकी क्लासिक फिल्मों में उनका क्लास, अभिनय, बंदिनी, सुजाता, तमाम फिल्में हैं साथियों। ढेर सारी कमेंट्स मेरा शामिल करने का इरादा है गीतों के साथ। बहरहाल अगला गीत प्ले हो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ढेर सारे कमेंट्स ले लूँ। उन्होंने मेरे साथी लिखते हैं एक कि इन्होंने लिखा है कि अभिनेत्री नूतन हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अपनी सहज अभिनय शैली, प्रभावशाली आँखों की अभिव्यक्ति और भावनाओं को जीवंत रूप से पर्दे पर प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें दर्शकों के दिलों में विशेष उन्होंने स्थान बनाया। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मधुर गीत से आगाज हुआ आज के इस कार्यक्रम का। तो एक दूसरे हमारी एक साथी हैं लिख रही हैं कि तब मैं बहुत छोटी थी, नूतन की फिल्म लगी थी तेरे घर के सामने। मेरे पापा नूतन जी के अभिनय वाली कोई भी फिल्म लगी हो तो हम सबको जरूर देखने जाते थे। उन्हीं दिनों में नूतन की सरस्वती चंद्र, खानदान और दुल्हन एक रात की देखी थी। उस समय नूतन के अभिनय में क्या खासियत है ये नहीं पता था, मगर जब थोड़े बड़े हुए तो सुजाता और बंदिनी देखने के बाद जाना कि अभिनेत्री नूतन में क्या खास है। धीर गंभीर चेहरे के पीछे भाव प्रवण अभिनय, मैंने लगभग नूतन के अभिनय की सारी फिल्में देखी हैं और मेरे पापा की तरह वो मेरी भी पसंदीदा अभिनेत्रियों में शुमार हैं। शायद ही कोई होगा ऐसा साथियों जिसे अभिनेत्री नूतन पसंद ना हो और उनका अभिनय पसंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सहज अभिनय बहुत कम देखने को मिलता है। तो वहीं
एक और कमेंट में लिखते हैं साथी कि नूतन जी भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थीं जिन्होंने शादी और करने और मां बनने के बाद भी बतौर लीड एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में दीं। अपनी सजल आंखों और स्वाभाविक अभिनय के लिए मशहूर नूतन थीं। जिस लड़की को रूप रंग के लिए ताने मिले उसी नूतन ने 1952 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया मिस मसूरी का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। तो चलिए कमेंट बहुत सारे हैं, गाना बजने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप सबने कहा है कि नूतन जी गाती भी थी, हमारे बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पढ़ने को मिला है। तो जी हाँ, वो गाती भी थी। तो जब छोटी सी गुड़िया की कहानी का आगाज़ हुआ है तो देखें वो गुड़िया आगे क्या कहती है।

तो ये वही फिल्म थी, वही गाना था जिसका आपको इंतजार था। छबीली फिल्म का गाना था और आवाज अभिनेत्री नूतन की थी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आपको अभिनेत्री नूतन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आपके दिल के करीब है, तो हमारी एक साथी लिख रही हैं कि उनकी किसी एक फिल्म को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म सौदागर में उनका अभिनय मेरे दिल को छू गया। तो वहीं दूसरी सखी ने भी लिखा है कि नूतन की सौदागर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बेबस बेवा की शक्ति रूप का शानदार प्रदर्शन है। सच में साथियों, उनकी हर फिल्म में उनका क्लास अभिनय हम सभी के दिलों में आज भी बसा है। एक साथी ने लिखा है कि नूतन जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु उनकी कई पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्में मैंने दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन पर देखी हैं और उनकी नई फिल्में सिनेमा हॉल में भी देखी हैं। वे सदाबहार अदाकारा हैं। एक साथी ने लिखा है कि बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है। और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का ज्वालामुखी उबल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामे का अभिनय बहुत ही कोमलता और गरिमा के साथ इस भूमिका को जिया। उनकी संवाद के बजाय अपनी आंखों से उन्होंने सूक्ष्म चेहरे के भावों से अपनी पीड़ा और असमंजस को पर्दे पर उतारा। वो प्यार, त्याग और अपराध बोध के द्वंद्व को केवल एक नज़र से बयां कर देती थी। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह अपने प्यार, अपनी जिंदगी त्याग कर अपने पुराने प्यार की तरफ लौटती हैं, क्या कोई सिने प्रेमी उनके इस किरदार और को अदाकारी को भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता साथियों, कोई भी नहीं। और इतने भावों को अपनी आंखों से बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक साथी ने लिखा है कि नूतन की फिल्मों के गानों, विशेष रूप से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए में उनका जो लिप सिंक होता है इतना सटीक और स्वाभाविक होता था कि वे गीत सीधे उनके किरदार का हिस्सा लगते थे। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि उनकी सारी फिल्में, नूतन जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म खानदान बचपन में दो आना टिकट दर पर देखी थी, पारिवारिक फिल्म सपरिवार देखी थी। नूतन जी की फिल्मों से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए साथियों। और हाँ, अपनी लिस्ट के गाने टिक करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन कौन से गाने मेल खा रहे हैं। एक कमेंट आया है कि नूतन महज एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के कैनवास पर उकेरी गई एक ऐसी जीवंत कविता थीं जो बिना किसी शोर के सीधे दिलों को छू लेती हैं। चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदारी रहने वाली नूतन की अभिनय शैली, संवाद अदायगी और उनकी भाव भंगिमाओं में दर्शक बन जाते हैं। नूतन अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थीं कि सिनेमा घर से बाहर निकलने के बहुत बाद भी उनकी हर हरकत, हाव भाव, नज़र और संवाद मन में बसे रहते हैं। उनकी आंखें शब्दों से अधिक कह जाती हैं। नूतन आज भी उस पहली बारिश की महक की तरह हमारे दिलों में महकती हैं, जिनकी यादें वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं होती। बहुत अच्छी बातें आपने बहुत अच्छे शब्दों को पिरो कर लिखी हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मैंने भी आज की इबारत से एक पैराग्राफ बनाया है और पुराने रेडियो गीतों की मधुर धुनें जब श्वेत श्याम यादों को फिर से जीवंत कर देती हैं, तब मन अनायास ही उन सुनहरे पलों में खो जाता है। कभी सुजाता की मासूमियत दिल को छूती है तो कभी बंदनी की भावनाएं मन को बांध लेती हैं। अनाड़ी, छलिया, सौदागर और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों के किरदार आज भी यादों में वैसे ही बसे हैं जैसे सावन में कन्हैया की बाँसुरी की मीठी तान। वाह, क्या बात है। आगे लिखा है, चुनरिया के रंग, राधा का प्रेम, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे गीत पुराने दौर की मोहब्बत और अपनापन फिर से महसूस करा देते हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने भेजा है कि आज की इबारत में एक नूतन प्रयोग किया गया है जिसमें अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों को जोड़कर इबारत बनाई गई है। आज छैल छबीली अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों और उनके शानदार अभिनय और बढ़िया गीतों से सुरीले सफर को सजाया गया है। अपनी आंखों से अभिनय को जीवंत करने में माहिर नूतन जी ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और ढलती उम्र में भी माँ की भूमिका में भी अपने बेहतरीन अभिनय से वो स्थान बरकरार रखा जो वो शुरुआती दौर में था। ऐसी महान अभिनेत्री नूतन जी को विनम्र नमन।
एक कमेंट आया है कि नूतन जी हिंदी सिनेमा के सबसे संजीदा और सहज अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। उनकी आंखें ही संवाद बोलती थीं। फिल्म बंदनी में कल्याणी की खामोशी हो या सुजाता में अछूत लड़की की पीड़ा या फिर तुलसी तेरे आंगन की मिस सौतन की जटिल भावनाएं उनकी आंखें ही बोल देती थीं। सत्यजीत रे जी ने कहा था कि नूतन की आंखों में ही स्क्रिप्ट लिखी होती है। नूतन जी ने अपने हर किरदार को जिया है। उन्होंने आदर्श नायिका की परिभाषा बदली और उनके किरदार कमजोर नहीं बल्कि हालातों से लड़ने वाले ज्यादा रहे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और जैसे कि बात बंदनी की चल ही रही है तो जब बात चले बंदनी फिल्म के जिक्र आए तो उस फिल्म का ये गाना ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता।

तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखें हमारे साथी लोग क्या कहते हैं। वैसे जब बहुत सारे साथियों ने उनकी मुस्कान और आंखों के बारे में लिखा है, तो सच में साथियों नूतन जी की मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में गहराई थी, सादगी उनका आभूषण थे और प्रतिभा उनकी असली पहचान थी। और वो सिर्फ पर्दे का सितारा नहीं थी, बल्कि वो हैं भारतीय सिनेमा की अमर विरासत। चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग, कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता, मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम लाजवाब है। उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी, उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदिनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा, सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती थीं, उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदिनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतर नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्मदिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा, शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से माँ का नाम ही नहीं ऊंचा किया, उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, माँ के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफ़र के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज़ नाइस एंड इंडिकेट्स मैनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफ़र फ्रॉम बंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी एंड नूतन जी एक्सीलेंट स्पॉन्टेनियस ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ऑल द बेस्ट।

एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमाने के दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में, एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे, बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्हें मेरी मंजिल फूल तुम्हें भेजा है, ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ

का है, फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है। तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतज़ार, और मुझे लगता है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में ज़रूर होगा। बताइएगा ज़रा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना सहज है ये गाना और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं।

हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा शुभ आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज़्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बच चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के ज़माने की हीरोइन थी लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियाँ रहती थी उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज़ तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्म अंकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत उठती हैं। कहीं वो बंदिनी है कहीं अनाड़ी की नायिका तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया अनाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो या धर्मेंद्र के साथ अनेक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्माया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले हम नूतन जी के फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्मपत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर, और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्मपत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी, बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहाँ पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज़ में गाए गए, मजरू सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है, एस डी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फ़ोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ, जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी, बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा, और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए

खुद को परोसा गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाऊ कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं। लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है। गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था। उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के चार अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज़ के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल, और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे उनका जो आँखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो भी कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतज़ार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए ज़रूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही हैं, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही हैं, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फ़िल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

एक साथ ही लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री नूतन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाजत। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी का विषय है मुलाकातें। दोस्तों, मुलाकातें क्यों जरूरी होती हैं? इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे विचार, भावनाएं और पहचान दूसरों के साथ संबंधों से आकार लेती हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होती, हाव भाव, आंखों का संपर्क, आवाज का उतार चढ़ाव, वे सब मिलकर सच्चा जुड़ाव बनाते हैं। यही वजह है कि आमने सामने की मुलाकातें रिश्तों में जान डालती हैं। मिलने जुलने से रिश्तों में मिठास आती है। इन मुलाकातों का असर मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ देता है।

0: खबर।
1: दोस्तों, मुलाकातें हमें सुना हुआ और समझा हुआ महसूस कराती हैं। दुख बांटने से हल्का लगता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। अकेलेपन में इंसान अपने ही विचारों में उलझ सकता है। लोगों से मिलना उस घेरे को तोड़ता है और मन को संतुलन और सुकून देता है। हम एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते। कितनी परेशानियों का हल किसी न किसी के साथ होने से, बात होने से चुटकियों में दूर चली जाती हैं। एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी की तमाम समस्याओं से लड़ने की हिम्मत दे जाती है, जिसमें सही राय और विचारों के आदान प्रदान में स्पष्टता और सच्चाई हो।

दोस्तों, हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है। उनसे मिलने जुलने से हमारी सोच व्यापक होती है, पूर्वाग्रह कम होते हैं और सहानुभूति बढ़ती है। हम दूसरों की गलतियों और सफलताओं दोनों से सीखते हैं, जो किताबों से हमेशा नहीं मिल पाती। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय और मौजूदगी चाहिए। साथ बैठना, चाय पीना, खामोशी साझा करना, ये छोटे पल भरोसा बनाते हैं। मुश्किल वक्त में वही रिश्ते काम आते हैं जिनमें नियमित मुलाकातें होती रहती हों। अच्छी मुलाकातें यादें बनाती हैं, सालों बाद भी वही हंसी, वही बातचीत दिल को गर्म रखती है। जिंदगी सिर्फ कामों की सूची नहीं, बल्कि साझा अनुभवों का संग्रह है, और मुलाकातें ही उन्हें जन्म देती हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
4: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
5: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया लाड साहब फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। साथियों, अगले गाने में भी इन्हीं दोनों आवाज़ों का जादू है, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। क्या कहता है ये गाना, आइए सुने।

0: दिल ने फिर याद किया फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर, जीएल रावल के बोल थे, सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये रातें, ये मौसम।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताज़ा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर कार्यक्रम जिला की चिट्ठी रिले किए जाएंगे।
2: न्यूज ऑन AIR पर भी आप ये सुन सकते हैं।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में 8 में से सिर्फ 4 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं और इन्हें विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहना गलत है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रधान जीते हैं, लेकिन पंचायत की असली ताकत वार्ड मेंबर की होती है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान, उप प्रधान और सभी वार्ड मेंबर का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से इनकार किया।
4: पहली बात तो यह है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं, ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए। ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए, 4 के चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के लोग है जीते हैं, 1 में हमारे भी जीते हैं। तो ये तो जो है किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था।
3: पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से खालसा टैक्स वसूलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इस तरह की अवैध वसूली पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत की है और इस मामले को उचित स्तर पर उठाया जा रहा है।
4: ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे। वो तो पंजाब सरकार को देखना कि ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की जो है कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है। हम उसका जो आलोचना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश भर से आए करीब 100 युवा एक सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश, खासतौर पर किन्नौर की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, विरासत, रणनीतिक महत्व व परंपराओं से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत संचालित माई भारत द्वारा किया गया है। किन्नौर के इस भ्रमण के दौरान युवाओं को यहां के अलग अलग गांवों में जाकर स्थानीय लोगों, पंचायतों, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ रिकांगपियो में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बेस कैंप में हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बिहार, दमन व दीव, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास, स्थानीय संस्कृति के संरक्षण, युवाओं की सहभागिता और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका को प्रोत्साहित करना है। शिमला में एक तहबाजारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीटू से संबंधित रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर आज इस मुद्दे पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन का आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई व कर्मचारियों द्वारा पैदा किए गए खौफ के कारण इस तहबाजारी की मौत हुई है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को देश में कहीं पर भी काम करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि 31 मई को नगर निगम की कार्रवाई के दौरान चंदन नामक विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई।
5: देश के अंदर एक कानून है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो 2014 में बनाया गया। ये कानून की मूल भावना क्या है कि किसी भी तहबजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता बल्कि उसको बसाना है। इसके बावजूद आए दिन जो कार्रवाई नगर निगम प्रशासन करता है, जहां गाड़ियां दौड़ाता है, लोगों के पीछे भागते हैं, उनका सामान छीनते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, 31 मई को 3:30 बजे IGMC के पास जो साथी चंदन और दूसरे साथी जो वहां काम करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, वो साथी जो अपना सामान समेट रहे थे और उसी अफड़ा-दफड़ी में गिर गए, वो वहां पर घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई। हम ये कहना चाहते हैं ये गैर इरादतन हत्या है।
3: प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत किस्म का मक्की बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में मक्की की बिजाई का दौर शुरू होने वाला है और 15 जून से अधिकांश क्षेत्रों में मक्की की बिजाई की जाएगी। सिरमौर जिले की 40,332 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की खेती की जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं मंडी जिले की चिट्ठी। लेखक है मुनीश सूद और वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
3: मंडी जिले में हाल ही में संपन्न नगर निगम चुनावों ने प्रदेश की राजनीति में विशेष चर्चा बटोरी। नगर निगम की 15 वार्डों वाली परिषद में 14 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जबकि बहना वार्ड में स्थानीय बहिष्कार के कारण चुनाव नहीं हो सका। चुनाव में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और लगभग 69% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार नगर निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखते हुए 12 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को एक सीट में संतोष करना पड़ा, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। चुनाव परिणामों के बाद मंडी शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। विजय रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे विकास और सुशासन की नीतियों पर जनता की मुहर बताया। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता ने एक बार फिर भाजपा के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनके आक्रामक प्रचार ने कई वार्डों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी क्रम में मंडी जिला परिषद चुनाव के परिणाम भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। जिले की 36 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। कई प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा, जिससे चुनाव परिणामों ने व्यापक राजनीतिक संदेश दिया। कोटली वार्ड और तेहरा वार्ड जैसे क्षेत्रों के परिणाम विशेष रूप से चर्चा में रहे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की पुत्री चंपा ठाकुर 2,464 वोटों से चुनाव हार गई। वहीं तेहरा वार्ड में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया को 47 मतों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं सराज क्षेत्र में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त कर अपनी मजबूत संगठनात्मक पकड़ का परिचय दिया। इन परिणामों ने मंडी जिले की राजनीतिक दिशा और जनमत को एक बार फिर स्पष्ट रूप से सामने रखा है। राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ मंडी जिला शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। कमांड घाटी स्थित संस्थान परिसर में होने वाले इस 4 दिवसीय सम्मेलन में भारत और विदेशों से 400 से अधिक वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, विद्यार्थी तथा आध्यात्मिक चिंतक भाग लेंगे। संस्थान परिसर में होने वाले इस सम्मेलन में भारत से अधिक वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, विद्यार्थी, आध्यात्मिक चिंतक भाग लेंगे। जिले के कमांड स्थित IIT में 6 जून तक तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मन मस्तिष्क व चेतना सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। IIT मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा है कि मन मस्तिष्क और चेतना पर आधारित ये बहुविषयक अध्ययन मानव कल्याण के साथ साथ अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया जैसी बीमारियों के शोध को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ये सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। उधर मंडी जिला प्रशासन नशे के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र यानी एनकॉड समिति की बैठक पुलिस लाइन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉक्टर मदन कुमार ने की। बैठक में नशे की रोकथाम, मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाएं। युवाओं को खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में ये भी बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा चिट्टे के विरुद्ध अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप मंडी जिला में भी सभी विभागों के समन्वय से अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब समाज के सभी वर्ग इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन को प्रतिष्ठित फेम इंडिया मैगजीन बेस्ट जिला दंडाधिकारी सर्वेक्षण 2026 में देश के शीर्ष 100 जिला अधिकारियों में स्थान मिला है। मंडी जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
6: जीवन भर संघर्ष किया, जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए तो वो पहन लें, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज़्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की ज़िंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गए इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी और उनके पिता मछुआरे थे।
6: देखिए
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
6: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुँची।
6: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग, कागज़ और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियाँ उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहाँ पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए 5 रुपए, आज के ज़माने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूँकि बिहार का मधुबनी ज़िला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
6: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं और स्थानीय लोगों से जब चीज़ें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपये में बेची थी जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
0: क्या बात है।
6: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी कितनी गौरव की बात है।
0: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
6: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है।
0: और
6: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुनकर।
0: बिल्कुल, और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: तो सोनाली जी, के गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था वो एक वटवृक्ष की तरह था,
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, अब वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठे, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें।
1: और हम लोग है ना, हम लोग भारतीय खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ते चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे या घुटने तक ही कर दिया,
0: अब तो घुटने तक
1: बस इतना करते हैं। पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है, विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं। जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे, तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा, और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान, थके लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो जाती थी। लेकिन अब वो समय कहाँ है, और अब समय एक गाना सुनाने का
1: सुनते हैं कि

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे
0: स्पर्श के माध्यम से
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी, हमारे
0: बीबर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माए, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: वैसे एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेल स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीख हैं, क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपनी छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आप कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहाँ पे टकराव ज़्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ रहे और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाए, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
0: क्या बात है भाई,
1: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
0: जी तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
1: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहाँ पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज़्यादा होती है टच करके बात करने की कि बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं तो वहाँ पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखें आप।
1: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी कि कहाँ ज़रूरी है और कहाँ नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: कहाँ हद से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहाँ हमें गले।
0: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज़ मी मुझे कुछ कहना है तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई हैं आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी।
0: आम बहुत खास है, कहने को
1: आज खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में। फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के, कभी काट के। तो आप बताइए, आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब मुझे तो, काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दो। फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते हैं, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस 2-3 फाक खा लो
0: बस। हाँ, मतलब एक आम जैसे तैसे, हाँ, उससे ज्यादा नहीं खाना
1: और
0: है।
1: फिर अगर तो ये आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
0: अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं।
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन होंगे, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी, तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ,
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़ कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोतापरी एक ने लिखा है, चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा। इधर महाराष्ट्र

0: फल्ली आम जो आता है वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं। मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है। सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफ़ी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूं।
1: बिल्कुल। और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
0: जी
1: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं। भले खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
0: जी
1: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या
0: जी
1: रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
0: अपने आप उग
1: पनप
0: जाते
1: जाते हैं, उग जाते हैं।
0: हैं।
1: जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम
0: हम
1: लगाए
0: लगाए
1: हैं
0: हैं।
1: और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतने वैरायटी के आम के पूछो मत। जहाँ गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोतापरी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था
0: हाँ,
1: और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा
0: और
1: लेते
0: वो
1: थे।
0: छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता
1: हाँ
0: जी, वो
1: हाँ
0: आते
1: और
0: थे।
1: आप तो कह रही कि एक आम दो फांक, वो
0: अब
1: तो
0: ओ ममता जी, वो जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर
1: उसमें
0: अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है
1: और
0: ना।
1: उसमें केमिकल नहीं होता था कोई
0: हाँ,
1: भी,
0: केमिकल नहीं
1: कोई
0: होते
1: दवा
0: थे।
1: मिला के नहीं, वो सीधे देसी
0: और
1: आम
0: खेलते
1: मिलता
0: कितने
1: था।
0: थे ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, कि गर्मियों की चिलचिलाते धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज़्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे
0: हाँ,
1: और
0: ये
1: आम
0: होठों
1: का,
0: के यहाँ पे।
1: और आम का पना भी बनता था।
0: हाँ,
1: और साथ में गांव में तो आम के, आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
0: ओहो,
1: तो
0: ये
1: ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली है।
0: और आम की जो रोटी भी बनाते थे, वो आम का
1: हाँ,
0: रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
1: आम
0: घी लगा
1: पापड़।
0: के, आम
1: हाँ,
0: पापड़ उसमें डाल के, और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
1: अमावट भी कहा
0: जी
1: जाता है
0: जी
1: जिसे। तो और बोलिए।
0: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मज़ा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज़्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मज़ा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूँगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राह प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वारफली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है,
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना
1: बिल्कुल मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना
0: सुनते

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाज़ें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजने को हैं। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम जो कि आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे हैं।
1: विविध भारती

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 02-2867-0288 यानी 2867-0288 और 02-400-24662 यानी 400-2466। तो सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश में फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदि हैं और हमें हर मौसम में अपना उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, फिल्म का नाम है हम आपके है कौन।
0: अच्छा,
1: उस फिल्म में लता मंगेशकर एंड एसपी बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
0: जी।
1: गीत के बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है, ये वाला गीत सर जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
1: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं सर जी। जब एमपी था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई एमपी में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और एमपी।
0: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
1: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
0: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना। अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको को थोड़ा छोटा बोलिए। वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा, सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो, फरमाइश।
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल की। फेम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का एक गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आके टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, तू ही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी की बोल, नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच
1: जी
0: नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर
0: जी, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से विक्रम सिंह और चालू राजा।
0: विक्रम सिंह, सागर में कौन से इलाके से बोल रहे?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है भी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है, अभी अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अभी तो नौ तपा चल रहे ये खत्म हो गए?
1: जी सर, बिल्कुल 3 दिन बाकी हो सर, वो
0: तनक बाकी है। 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए है, फिर मौज हो जाए है। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं जी बताओ?
1: हमको सुनना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
0: ए दद्दारे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
1: सर जी आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया, आपसे बात करके
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोताहरण है ना सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है।
1: जी आपका बिल्कुल सर, बुंदेलखंड जैसा बतकाव है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा? क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्

वो लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राग सुनाती है, वो ठुमक ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं, एक तारा मेरी भैंस को डंडा।

और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो

0: करती थी। मेरी बहन को डंडा क्यों मारा, वो खेत ज्यादा चलती थी, मेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी बहन को डंडा क्यों मारा।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो।
1: हाँ जी कौन?
2: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
1: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से।
1: अच्छा बताइए क्या हाल चाल है पीतमपुर के?
2: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
1: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं
2: जी?
1: अब हमें ये बताइए, हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
2: गर्मी से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी अपने साथ लेके जाए।
1: बहुत सही, बिल्कुल।
2: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले।
1: सही बात है। अच्छा बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
2: गाना फिल्म का नाम है सूरज तुमसे इतना प्यार है।
1: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोरोली मुंबई से बात कर रहा हूँ
0: जी। बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा फिल्म का गाना सुनना चाहते। पैसा
0: गाने के बोल बताइए।
1: जिन्हें ना है इन लोग पर वो कहाँ है।
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या दर्द था
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मिश्रा, उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने दिल्ली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर।
0: जी
1: बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये 3 दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी,
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर, वो वाला फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक्ट जो शुरुआत किए हैं, 1 बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी। मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे मैं नहीं। आप तो मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया। क्या बात है,
0: मजा आ गया। क्या बात है, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपके बड़े मतलब सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी।
0: अरे
1: हेलो, आज
0: बाप
1: मैं
0: रे,
1: भी बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना?
1: यस। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में समझाया, आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात कर।
0: ओहो, क्या बात
1: वो
0: है।
1: राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे
0: जी
1: ही मैं आप भी मेरे जहन में हो।
0: जी
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत। सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ,
0: जी
1: लोग मेरे से तंग आ गए कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा, विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहे हैं आपके साथ, है ना?
1: हाँ, मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूँ, उनका यही

0: 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है, न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
1: अच्छा, क्या
0: हाँ
1: बात है,
0: जी।
1: क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
0: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन ना जाए।
1: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद हैं आपको।
0: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले आते, पूरा गाना सुना सकती
1: वाह वाह वाह,
0: हूँ
1: ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो
0: और
1: आप
0: सब
1: कहती है
0: कुछ।
1: ना कि
0: हाँ
1: मैं
0: जी,
1: हमेशा कहता हूँ, क्या बात है।
0: क्या बात है, थैंक यू।
1: जी
0: बचपन
1: शुक्रिया।
0: से आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम 57 नाउ, और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
1: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध
0: हाँ,
1: भारती सुनते हुए।
0: बस सब सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बचती।
1: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
0: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात करके। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: शुक्रिया। हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म, और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी बताइए,
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं
1: हाँ,
0: जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया। मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं,
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, और कई इसके कारण होंगे भैया। सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं, पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंक के, गीत के बोल है ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662। अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया 2 महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं, तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है पहले हिंदी में समाचार, व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित ना रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रॉड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 से भी अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इससे फील्ड कमांडरों की परिचालन दक्षता और मजबूत होगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों लगाई जा चुकी हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 855 मेगावाट है। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन देर से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, and automobiles, among others. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, "Today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation."
2: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
4: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Defence Minister Rajnath Singh today approved a 2-fold increase in financial ceiling for field commanders to strengthen operational efficiency. He also released the revised delegation of financial powers for the defence services, including medical and other projects. The Ministry of Defence said the revised delegation of financial powers will facilitate procurement of more than 1,25,000 crore rupees through the revenue route, in line with the current year's budgetary allocations. Union Public Service Commission has developed face authentication protocol in its endeavor to enhance the integrity of the examination process and prevent impersonation. The Commission successfully implemented face authentication during recently held Civil Services and Indian Forest Service Preliminary Examination 2026. The face authentication protocol ensures that the candidate whose photo was uploaded at the time of filing the application form is the same as the candidate who appears with the admit card to write the exam. 4 patients lost their lives and more than 20 others were injured in a fire that broke out in early hours today at a private hospital in Muzaffarpur in Bihar. According to reports, the blaze originated in the hospital's ICU and rapidly spread throughout the building. Fire brigade personnel managed to bring the fire under control after extensive efforts. An Indian origin cardiac surgeon, Dr. Sudhir Srivastav, sets a world record by performing the longest distance robotic telesurgery from Guyana in India by using Made in India surgical robotic system technology. The telesurgery was remotely conducted between Georgetown Public Hospital in Guyana and IRCAT India in Indore. The U.S. House of Representatives passed a resolution that seeks to halt President Trump from taking further military action in Iran. The 215-208 vote was successful after 4 Republicans joined Democrats in a rare public show of disapproval of the war, which began in February. This is the 4th attempt by the House to rein in Trump's war powers, which critics say lack congressional approval. Benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The BSE Sensex rose 14 points to close at 74,360. NSE Nifty added 11 points to settle at 23,417. The inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship kicked off in Ahmedabad in Gujarat, marking a historic milestone on the global sporting roadmap. Prime Minister Narendra Modi will virtually join the mega event in the evening to share his best wishes as yoga enthusiasts and athletes from across the globe gather for the competition. and India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number 1 in the women's 57 kg category, while Asian champions Priya Ghangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg surged into the top 3 of their respective categories. In the women's section, Meenakshi extended her reign as world number 1 in the 48 kg category, while in men's section, Sachin Sivaj and Narinder Berwal broke into the top 5 following a sustained run of international success. And that is the end of this news bulletin.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भजन फिल्मों से। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सायंकालीन प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं हेमंत कुमार व साथियों के गाए इस भजन के साथ।

अभी आपने सुना हेमंत कुमार व साथियों की आवाज़ों में गाया ये भजन। फिल्म का नाम था भागवत महिमा। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना अनवर की आवाज़ में गाया ये भजन घर का सुख फिल्म से, भजन फिल्मों से। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लॉकेट फिल्म से।

0: रात्रि भैया शिव जी का है दिन।
1: वाह वाह वाह।
0: अरे मृदंग बोले, हाँ मृदंग बोले दंग दंग और तबला तक धीना धीन धीन।
1: हाँ तक धीना धीन धीन। वाह भैया।

0: दो आंखें बारह हाथ, इसमें अभी आपने सुनी ये प्रार्थना। और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुरेश वाडेकर की आवाज में।
1: कांवर की महिमा अपरंपार है। श्रद्धा और भक्ति सहित जो भक्त भी ओंकारेश्वर के द्वार पर आता है वो सर्व सिद्धि को प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक दुखियारी इस मृत्यु रोग में यातनामय जीवन व्यतीत कर रही थी। देव ने प्रसन्न होकर उस स्त्री को इस नाशवान जगत के रहस्य बताकर मोक्ष का मार्ग दर्शाया।

सुरेश वाटेकर और साथियों की आवाज़ों में गाए इसी भजन के साथ हमारा आज का भजन फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन फिल्मों से FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं और अब ये समय है कार्यक्रम युवा मंच का, और इसमें आज जानकारी का विषय है विज्ञान जगत और रोजगार समाचार।

युवा मंच कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को आपकी दोस्त का प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों, शाम का ठीक वही समय यानी 5:30 का और हम लेकर आ गए हैं आज का युवा मंच कार्यक्रम लेकर, जिसमें आज हम आपको विज्ञान जगत व रोजगार समाचारों से रूबरू करवाएंगे। जी हाँ साथियों, हम आज इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे, जानकारियां साझा करेंगे। लेकिन साझा करने से पहले हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 MHz पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं विज्ञान जगत से। जी हां युवा साथियों, सबसे पहले बात होगी गगनयान मिशन की दिशा में बड़ी सफलता के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IAGT-02 को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परीक्षण में क्रू मॉड्यूल की पैराशूट प्रणाली और सुरक्षित लैंडिंग क्षमता का परीक्षण किया गया। ये भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे हम बात करें युवा साथियों नई पीढ़ी के वैज्ञानिक नवाचारों का मंच के विषय पर, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विज्ञान टेक 2026 का आयोजन किया गया। इसमें अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और कृषि जैसे क्षेत्रों में विकसित स्वदेशी तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। आगे बात करते हैं दुर्लभ खगोलीय घटना यानी ब्लू माइक्रोमून के बारे में। युवा साथियों, इस सप्ताहांत आकाश में ब्लू माइक्रोमून दिखाई देने वाला है। ये सामान्य पूर्णिमा की तुलना में थोड़ा छोटा दिखाई देता है क्योंकि उस समय चंद्रमा पृथ्वी से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होता है। खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए ये एक विशेष अवसर माना जा रहा है। अगर हम बात करें कृत्रिम बुद्धिमता की, तो कृत्रिम बुद्धिमता से वैज्ञानिक अनुसंधान में क्रांति। वैज्ञानिकों ने साइंस अर्थ नामक एक नई AI आधारित प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव रखा है जो दुनिया भर के वैज्ञानिक संसाधनों, प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर प्रणालियों को जोड़कर शोध कार्य को तेज और अधिक प्रभावी बना सकती है। इसरो और जल शक्ति मंत्रालय की बड़ी साझेदारी भारत में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने समझौता किया है कि अब उपग्रह तकनीक की मदद से जलाशयों की निगरानी, नदियों के प्रवाह का अध्ययन, जल गुणवत्ता आकलन और जल संरक्षण से जुड़े 24 शोध क्षेत्रों में काम होगा। युवा साथियों, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए नई प्रकाश आधारित चिप वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सूक्ष्म चिप विकसित की है जो प्रकाश यानी लाइट के माध्यम से सूचना को उत्पन्न, नियंत्रित और पढ़ सकती है। ये तकनीक भविष्य में तेज ऊर्जा कुशल AI यानी क्वांटम कंप्यूटरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और अगली जो जानकारी दे रहे हैं युवा साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हेपेटाइटिस बी के इलाज में बड़ी सफलता की अगर हम बात करें, तो एक नए शोध में दवा बेपिरोविरसेन ने क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के लगभग 20% रोगियों में फंक्शनल क्योर के संकेत दिखाए हैं। विशेषज्ञ इसे इस गंभीर बीमारी के उपचार में महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं। जानकारियां अभी और बाकी हैं हमारे पिटारे में युवा साथियों, लेकिन लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। पर कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम युवा मंच।

0: निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आपका स्वागत है। युवा मंच कार्यक्रम में समय आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और इसमें आज बात हो रही है विज्ञान जगत और रोजगार समाचारों पर। पहले बात चल रही है, जानकारी चल रही है विज्ञान जगत पर। तो युवा साथियों, महिला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर फीफा ने नई पहल की है। फीफा ने महिला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें पोषण, नींद, मासिक धर्म, गर्भावस्था और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल किए हैं। और आगे हम अगर बात करें महानगरों की निगरानी प्रणाली पर संकट के बारे में, तो अमेरिका में वैज्ञानिक समुदाय ने महासागर निगरानी परियोजना यानी ओशन ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव को सीमित किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें जलवायु परिवर्तन और समुद्री पारिस्थितिकी संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों का नुकसान हो सकता है।

चलिए युवा साथियों, अब हम बात करते हैं जून 2026 के प्रमुख रोजगार अवसरों पर। एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल 2026 के लिए लगभग 12,256 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्नातक उम्मीदवार 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में सहायक लोको पायलट एएलपी भर्ती भी है। भारतीय रेलवे में 11,127 पदों पर सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून है। भारतीय वायुसेना में अधिकारी बनने का अवसर आपके पास है। 2026 के अंतर्गत लगभग 379 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून है। डीएसएसबी में 1979 पद हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी डीएसएसबी ने ग्रुप बी और सी के 1979 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 16 जून से प्रारंभ होगी। तो ये तो थी युवा साथियों रोजगार अवसरों के बारे में जानकारी। तो अब घड़ी की सुइयां आपकी दोस्त वर्षा टोच को ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं। तो जाने से पहले हम आपको बता दें कि इस जानकारियों से भरे और मनोरंजक कार्यक्रम यानी युवा मंच के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और आज मैं रही आपके साथ वर्षा कटोच। जाने से पहले चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि अगर युवा साथियों आप किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते तो किसी के दुख का कारण कतई ना बने। और मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलती हूँ अगले कार्यक्रम में, फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज आपने सुना विज्ञान जगत और रोजगार अवसरों पर जानकारियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं 103.4 MHz धर्मशाला से आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर किसान बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी। इसमें जानकारियों के साथ साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। आज की जानकारी का विषय होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।

कार्यक्रम मौजियां ग्राइंडिया आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। इसमें आपको मधुमक्खी पालन रोजगार का उपयुक्त साधन विषय पर जानकारी दी जाएगी। रात्रि 8 बजे आप सुना करते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। देश गान का प्रसारण समय रहता है रात्रि 8:30 का। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत अभिनेता राजेश खन्ना पर फिल्माए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 पर हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम रंगे गजल, जिसमें आपको गजलें सुनवाई जाएंगी फिल्मी और गैर फिल्मी। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, शाम 7:10 पर विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, रात्रि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार व 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारी धर्मशाला के इंद्र से। आई शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला के इंद्र है। शाम के 5:58 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मी
1: सोलर पैनल लगवाने के लिए बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अब 99% एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और 96% से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से की जा रही है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की हालिया स्थिति पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में सुजाता शर्मा ने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों में से 99% निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित किए जा चुके हैं। शिमला में आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। नेगी ने बताया कि 13 फरवरी 2023 से 25 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 99% निर्णय कार्यान्वित किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष निर्णयों को समयबद्ध संचालित करने के निर्देश दिए। एक अन्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लघु व सीमांत किसानों के लिए भूमि नीति पर चर्चा की गई। जगत सिंह नेगी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए नीति तैयार कर ली गई है और इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दावा किया है कि प्रदेश के 12 में से 9 जिलों में भाजपा समर्थित जिला परिषद बनने जा रही है। उन्होंने आज नाहन में कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर में जिला परिषद की 19 सीटों में से कांग्रेस पार्टी मात्र एक सीट ही जीत पाई है, जबकि भाजपा ने 15 सीटों पर जीत हासिल की है। बिंदल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी हमीरपुर जिला से आते हैं और हमीरपुर जिला में केवल एक सीट कांग्रेस जीत पाई है 19 सीटों में से। 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 3 सीटें इंडिपेंडेंट्स के पास। इस बुरी तरह से जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। एंटी कांग्रेस प्रो बीजेपी एक लहर चली है। जनता ने 3.5 साल तक कांग्रेस पार्टी के झूठ को, भ्रष्टाचार को झेला और वोट की चोट से उसका जवाब।
0: चंबा नगर परिषद में भुवनेश्वरी गुलाटी को अध्यक्ष और जितेंद्र सूर्या को उपाध्यक्ष चुना गया है। ये दोनों कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं और इन्हें 7-7 मत प्राप्त हुए हैं। भुवनेश्वरी गुलाटी ने कहा कि चंबा शहर को स्वच्छ बनाना और सड़कों का सुधार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चंबा में वर्षों पुराने कूड़ा संयंत्र निर्माण की मांग को भी जल्द पूरा किया जाएगा।
2: सबसे पहले तो मैं अपनी चंबा की समस्त जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला जनता की सेवा करने का, और स्वच्छ, सुंदर और विकसित चंबा बनाना मेरा सपना है। और चंबा को एक हम जितने 10 सालों में कार्य नहीं हुए, मैं चाहूंगी कि हम 1.5-2 साल में वो कार्य करके दिखाएंगे। पारदर्शिता सबसे जरूरी है, वो हम रखेंगे।
0: प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हरित पंचायत पहल अब राज्य भर के अनाथों व विधवाओं का कल्याण करेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल के सामाजिक कल्याण पक्ष को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने राजस्व वितरण मॉडल में संशोधन करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों को 500 किलोवाट क्षमता की भूमि आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से प्राप्त आय का 20% राज्य सरकार को दिया जाएगा, जबकि 25% हिस्सा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार शामिल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान बागवान व पशुपालक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज जानकारी का विषय रहेगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे ही श्रोतियां दा किसान बागवानां दा ट्याले पर तुहां दा लोका पाऊ कने अज ट्याले पर मेरा साथ दे देन ताई कमाई आई।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: मैं दिखे तुहां ऊरे लगे हे पाणा, मैं बोले कहियो जांदी अबरी गलाना ताई जेड़ा से ऊरे आरे पाई के तां यूंगी फिर है ना।
1: हाँ जी, कने दिख भाई हुण मिंजो जरे के ट्याले च राम सलाम कर लांदी ना मैं सारी आई फिर गां दी कप सुणांदी है ना जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, राम सलाम तां करना ही पौना ताई।
1: हां जी, हाँ कार्यक्रम किसान वाणी सुना कर दे सारे ही सारे किसान बागवान पशु पालक भाई भैणा दा स्वागत है। कने मेरी तरफ ते दो जो हाथ जोड़ी करी नमस्कार है ना जी।
0: हाँ जी हाँ
1: कने
0: जी,
1: भाई सारे ठीक ठाक होने, साढ़े किसान भाई भैन सारे मतलब सेहत ठीक होनी तिना दी, कने परमात्मा ठीक रखे है ना जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, सेहता तो ठीक है ना। हूँ देखा ताई कम्मा दा टाइम भी पे है ना, हाँ दे किसान भाई जड़ा से पट्टियां च लगे हो रहन लगे हो पाना उरी लगे तो नहीं देना है ना,
1: जी
0: कहे कि यह समय होंगे कने इस समय पर जड़ा सा हाँ दा किसान जड़ा सा हूँ आगामी फसल होने वाली फसल जी साड़ी धाने दी है ना,
1: हाँ
0: तो उसकी
1: जी
0: तैयारी च लगे हो कने देखा बी जड़ा सा लगा कर देना ना, तो तुम्हारा क्या हाइब्रिड बाना ऐसा बरिए कि अपना रखे अभी।
1: मैं तो कुछ अपना रखिए कने कुछ हाइब्रिड बाना है ना जी।
0: ओ ताई मेरी बड़ी तेज हो इन्ना अपने घरे दे अली भी मचदे कड़ूना तो भी मचदे ताई।
1: हाँ, मचदे हैं।
0: अच्छा, ता तो बड़ी वधिया कने बाकी कर ले है ना, तो दिखा किसान साथी हो जाली भी तुहां बी वाहना है तो बी जड़ा सा तुहां अच्छी किस्मा का वाहना है ना ताई, कई कि बीए पर ही जड़ा सा फसल होंगी है कने। दिखा पिछली बारी क्या होया, मैं तुहां गप सुना रौनकी रामे की पट्टियां ऊर लगांदे लगांदे 21 पट्टी ऊर घटी है दिसदी है ना, कने
1: अच्छा
0: बखे आली कमल वाल गया सह कने तिनी झटपट दिथू ते ऊर लिया है ना, तो सह लगाई ता थोड़ा दे कने थोड़ा दे और घटी है ता तिनी कुछ की और ही बखे आले ते गया तिथू ते भी लगाई ता है ना, तो
1: अच्छा
0: जालू तिनी ऊर लगाया जालू फसल तैयार हुई ता अद्धी पट्टी दिदी पकी गई कने अद्धी पट्टी देड़ी सह कच्ची रही, कहे कि सह जड़िया फसल ही है ना जड़े बी है सह होरी दे उस दे है ना,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: सह जड़ा सह तिस स्हाबे नहीं तुहां पूरी जानकारियां कन्नै जड़ा सह अपने ऊरी बितानी दी जड़ी सह लगानी है ता टाइमे दी कन्नै जानकारी कन्नै जड़ी से लगानी कि कौन दी किस्म लगा दे तुहां एक ही बाह ना फिरी है ना, सह
1: जी
0: होंदा अगर तिनी लई होंदी ता सह पूरी या तो तिसदी कमलों ते ही लैंदा है पूरी उरी तिसाई पट्टिए च बांधा तां ता ठीक है, सह तिथु ते भी घटी कने उथू ते भी घटी कने फिर जालू फसल पक्की ता सह फिरी इं लगे अद्धी कच्ची कने अद्धी पक्की है ना, तो सह कम्मे च फिरी मेहनत तो उतनी कीती तिनी बेचारे भी पर तुसी कम्मे दा जड़ा हत्थ है नहीं ना आया कुछ भी है ना मेहनत दा है ना,
1: जी
0: तो यह गल होंगी लौकिया लौकिया गल्ला होंदियां ये जड़ियां अपनी ध्यानें च रखनिया होंदियां है ना, तो ताई एक गल होर भी है ये बोले कुछ खेत बचाओ अभियान चले ये बारे च भी सुने तुम कुछ।
1: जी जी बिल्कुल। दिखा बई खबर तुहां सुना मतलब दसा दे बे खेत बचाओ अभियान जड़ा 1 जून ते लेने 30 जून तक साढ़े पूरे देश भारत बिच जड़ा ऐसे चलिया है ना।
0: तो ताई ये चलिया के इधर पीछे क्या उद्देश्य क्या है भाई।
1: इसका मुख्य जो उद्देश्य ऐसा है जी साढ़े रसायनिक खादा कन्ने आह फसल च पा कर देती दे उपयोग जो घट ते घट करना है ना जी,
0: अच्छा
1: क्योंकि
0: अच्छा
1: रसायनिक खादा कन्नै दिखा भाई साड़ी जमीना दी जड़ी सेहत है
0: सब
1: सभी
0: बीमार
1: खराब
0: हो
1: हो
0: दी। हाँ
1: करदी
0: जी हाँ
1: कन्नै
0: जी
1: सोगी सोगी माणुआं दी भी दिखा भाई हर घरे च तो जो मतलब कोई ना कोई बीमारी वाला माणु मिल ही आना है
0: जी
1: ना।
0: जी जी
1: तां ये जड़े रसायनिक साड़ियां खादा न रसायनिक दूइयां स्प्रे वगैरह करा करदे हां दवाइयां पा करदे तिन कन्नै साड़े सेहतां दा बुरा हाल होआ करदा, साढ़े जमीना दा तो होआ करदा, कन्नै कन्नै साढ़े पशु जेह्ड़े घा खा करदे तिन्हां दा भी स्वास्थ्य खराब होआ करदा। तो इस अभियान दा मुख्य उद्देश्य है कि रसायनिक खादां दा इस्तेमाल जेह्ड़ा ऐसे घट ते घट करना, लोकां नूं जागरूक करना है ना
0: जी
1: जी।
0: जी जी कने किसानां दी खेती लागत जो भी घट करना कने उन्हां दी आय दो जेड़ा सा बढ़ाना है ना।
1: जी खेती लागत अपी घटी आनी जलू तुहां रसायनिक खाद 2000 दी खाद नहीं खरीदनी है ना जी, तो अपू
0: हाँ
1: घटनी है ना जी।
0: ठीक बोला दे, कने इस अभियान दी समय सीमा दी गल करिए तां जियां ताईए गलाया कि अभियान जेड़ा सा 1 जून ते 30 जून ताईं जेड़ा सा पूरे महीने भर लागू है ना, कने
1: जी
0: इस ते बाद अगर शुरुआत दी गल करिए तां अहां दे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दी देखरेख च जेड़ा सा मध्य प्रदेश दे रायसेन ते जेड़ा सा बड़े स्तर पर जेड़ा सा शुरू हुआ करता है ना,
1: जी
0: कने इस ताई सब ते अच्छी कने बाकी गल है कि सीधा संपर्क रहना जी अहां दे कृषि वैज्ञानिक होइए कृषि विज्ञान केंद्र होइए उत्थों दे जेड़े विशेषज्ञ अधिकारी ने तिना सीधे ग्रां कने ग्राएं दी पंचायतों तक पूजी के जड़ा सा किसानां जड़ा सा सलाह जड़ा सा देनी है ना, कन्नै दूई गल ए भी है इस जेहड़ी जानकारियां कन्नै फायदे किसानां नूं जेहड़े मिलने ने ते इस तुहाडा मृदा परीक्षण होई आ जियां हर किसान दे खेत दी मिट्टी दी जांच कीती जानी है ना सोयल हैल्थ कार्ड दे नाल दा जेहड़ा सै बनना है तिन्हां दित्या जाना है ना कन्नै जियां ताई तुहां गलाया कि संतुलित खाद दा उपयोग होना है रसायनिक उर्वरकां दे अंधाधुंध जेहड़े इस्तेमाल जो रोकने ताई कन्नै जमीनां दी जरूरत दे हिसाबे कन्नै ही जेहड़ा सै खाद पानी इहदी भी ट्रेनिंग जेहड़ा सै दित्ती जानी है ना
1: जी।
0: कन्नै इस इक गल होर है कि नकली समान दी पहचान जियां बाजारां च बिकणे वाले नकली खाद होइए नकली बीज होइए नकली कीटनाशकों के पहचान पहचानने के तरीके भी जोड़ा सा सिखाए जाने किसान ताकि किसान जड़े ठगी का शिकार नहीं होन है ना कन्नै प्राकृतिक कन्नै जैविक खेती कन्नै भी जोड़ा सा अहां दे किसानों ज्यादा तो ज्यादा कियां जोड़ना इस पर भी जोड़ा सा बल रहना है ना तो बड़ा वधिया कन्नै बांका अभियान चलिया है ना तो यह तथी इस अभियान से संबंधित जानकारी कन्नै हुण सुणदे टियाले पर एक लोक गीत
1: जी।

0: किसान साथियों तुम्हें सुनाया ए प्यारा दे लोक गीत कने ताई यहां आशा करदे नहां दे किसान साथियों पसंद भी आया होना है ना
1: जी।
0: ता कार्यक्रम च हुण गां बद्धे होए वेला ओदा भेंट वार्ता दी जानकारी अपने किसानां ने सांझी करने दा है ना।
1: हां जी।
0: ता ओ सुनदे ने भेंट वार्ता दा अंक
1: जी।
2: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह अहां दे कृषि वैज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्नै कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज मेरे कन्नै जुड़ा करदे ने एक उन्नत किसान जिहड़े कि मशरूम कन्नै इदे सोगी मछली पालन दा काम जिहड़ा सा करदे हन ओवा करदे ने इन्हां कन्नै गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना नाम दसा।
3: राम सिंह सपुत्र श्री हरबंस लाल जी।
2: हां जी।
3: ग्राम देरिया।
2: अच्छा।
3: शमीरपुर ब्लॉक कांगड़ा पौंदा घरे दा।
2: हां जी।
3: इत्थे दा ब्लॉक जे है साडा रैत ब्लॉक पौंदा।
2: अच्छा। यानी कि घर तो हां दे देरिया ने।
3: घर देरिया
2: कने इस जगह दा क्या नाम है?
3: इस जगह अरनी।
2: अरनी।
3: हां डुगियारी।
2: अच्छा ता मशरूम दा काम करदे है ना?
3: मशरूम दा प्लांट भी लाया जी।
2: हां जी।
3: कने मशरूम दा भी करदे कन डिंगरी दा भी करदे।
2: अच्छा।
3: मछली पालन दे टैंक बनाए हे मैं 5000 स्क्वायर मीटर दे।
2: हां जी।
3: कने बगीचा भी लगाया कने।
2: अच्छा।
3: कने सब्जी दा काम भी करदे दे बारी खेती
2: बाड़ी। अच्छा ता सबसे पहला गल करदे ने मशरूम दी, किन्ने साल हुई है मशरूम दा काम करदे?
3: मशरूम मुझे 3 साल हुई है प्लांट लगाई।
2: अच्छा किन्ने की बैग ते शुरू किता हा तो? हां
3: मैं शुरू ते जिस टाइम ते 400 बैग ते स्टार्ट किता।
2: अच्छा कने इस वेला कितना की बैग तो लगा?
3: इस टाइम कोई 600 की बैग है, इस टाइम खत्म हुई है।
2: हां जी।
3: पर हुन इस ते बाद जरा कि आजकल गर्मी च बड़ा घट सी बिकदा।
2: हां जी।
3: हां 2 महीने गैप पाए देना है।
2: अच्छा।
3: जून जुलाई कहते इस ते बाद अगस्त ही पेल लिया उन्हें कहते सितंबर ते भी सारे चालू हो जाने।
2: अच्छा जेडे मशरूम दे जेडे बैग होंदे ना एदी तो हां भर्ती आपू करदे की बने बने
3: मंगवा? जेड़ा की प्लांट जिन्हें बड़े प्लांट लाइयो तिना भर्ती करी की भेज दे। ज्यादातर मैं जो लोंदा यूनिवर्सिटी पालनपुर ते लेंदा।
2: अच्छा।
3: मतलब विश्वविद्यालय ते कने कदी दबारी मतलब एक हॉर्टिकल्चर आले रखे बैजनाथ लखे।
2: अच्छा।
3: मतलब तिना ही प्लांट बनाया।
2: हाँ जी।
3: बैजनाथ ते भी लोंदा कने।
2: किन्ने किलो वाला बैग लगांदे तो? हां
3: इत्थू साले जे 10 किलो वाला बैग चलदा।
2: अच्छा।
3: कने जेड़ा की प्राइवेट आले दिंदे से 10 किलो दिन उस पे तिना 7-7.5 किलो ही हुंदा। कने जेड़ा की मतलब यूनिवर्सिटी दे कने हॉर्टिकल्चर आले दे बैजनाथ ते लोना
2: हां
3: सब पूरा 10 किलो हुंदा टोली की पाई अंदर देना।
2: अच्छा।
3: कने यूनिवर्सिटी आले 20 किलो पर बैग पाई अंदर मतलब।
2: अच्छा।
3: बड़ा बैग
2: तो एक बैग दी क्या कीमत होंदी जल तुहां खरीद देन दा?
3: एक बैग दी दबारी मतलब जेड़े की हां प्राइवेट आले ते लेंदे से 110 रुपये पई जादा।
2: हां जी।
3: हां जी।
2: हां जी।
3: मैं 110 ते दी के किराया पाला पाई की 125 रुपये बैग पई जांदा सानू।
2: अच्छा ए तू घरे पुजदा ना?
3: हां जी। 92 रुपये बैग सह लेंदे पर बैग।
2: हां जी।
3: कने उसके बाद अजकल 22-23 रुपये पर मतलब जीपा का 200 बैग का किराया आई जाता 11-12 रुपये पर बैग से पी जाता दिवाली में।
2: अच्छा
3: जी जी।
2: राम सिंह जी अगर गल की जाए ना इसके बाद एक बैग जिया चल तो बैग मंगवाए ले तो प्लांट अंदर लगाई था
3: जी, जी।
2: किन्ने दिन च सह फिर तैयार हो जाना?
3: जी हाँ मतलब इस तरीके ना होंगे कि यहाँ 17-18 दिन के बाद केसिंग करना होंगी।
2: हाँ
3: केसिंग तेना भेजी होंगी।
2: अच्छा केसिंग क्या चीज होंगी?
3: केसिंग होंगी दिवाली आपू बनाई होंगी आम तो बनाई होंगी केसिंग अलग ही बनाना पौंदी आपू मिट्टी हुंदा गोबर हुंदा।
2: अच्छा।
3: इस बीच मतलब ये हुंदा ज्यादातर मतलब कि साढ़े मित्र कीटाणु ज्यादा तादाद च हुंदे ताकि दवाई तिना बैगे दे उपर जे पानी है ती जल्दी मशरूम निकले आउंदे।
2: अच्छा कोई खाद टाइप हुंदी होनी
3: है? हां टाइप च बनाई होनी।
2: अच्छा ते जियां तुहां दस्सिया कि 10 किलो वाला बैग लगभग तुहां लगांदे हैं ना?
3: जी जी।
2: ते अगर गल करन दा फिर 10 किलो च उत्पादन कितना आउणा तुसी एक ही बैगे च?
3: एक बैग च दवाई 3.5-3.5 किलो ते उपर नहीं चलदा।
2: अच्छा कितनी बारी निकलदा है कने
3: ए? मतलब लगातार करी करी कोई मतलब पहले तो दवारी मतलब शुरुआत च तो ठीक तादाद च निकलदा।
2: हाँ।
3: फिर आस्ता आस्ता घट जांदा कोई 1.5 महीना 1.5-2 महीने चली जांदे बैग।
2: अच्छा इससे बाद क्या फिर बैग है खाली कुछ नहीं?
3: जल बैग होता तो इसकी खाद बनाई दे हम प्लांट बनाए होंगे नहीं कैंचुआ खाद प्लांट बनाए बनाया प्लांट कने।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो इन्हें बैगों की खाद यहाँ इस प्लांट च पाई दे।
2: हाँ जी।
3: फिर 5-7 महीने के बाद दूई खाद भी पांदे कन्नै गोबर बगैरा।
2: हाँ जी।
3: फिर साढ़े खेती कन्नै आई जाती।

0: साथियों इसी प्यारे दे मिठे दे लोक गीत कन्नै अहां दा टियाले दा बेला भी आउदा जाने ते पहले दस दईए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग दित्ता विकास पठानिया होरां प्रस्तुति जिहड़ी है जतिंदर पाल सिंह होरां दी कन्नै हुण अपने टियाले दे लोके बाऊ
1: कन्नै देर ताई जदे अनुमति
0: अच्छा जी जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। इसमें आज जानकारी का विषय रहेगा मधुमक्खी पालन रोजगार का उपयुक्त साधन।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां सुनने वाले सारे ही श्रोतियां दा इसा संझा दी वेला टियाले ते तुहां दा लोका पाऊ कने अज मिंजो कने श्रोता ओ ताई मेरी आई हो है ताई राम राम
1: राम राम लोके पाऊ जी कने कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां सुना करदे सारे ही श्रोतियां जो मेरी तरफा ते भी राम राम कने बई लोके पाऊ बई बड़ी बड़ी ते खिट लाई हुई ही हुण दी है ते गया हुण कथां गया खिट्टा लाई करी ते
0: कता
1: चढ़ जाई है दिखला मैं बोलिया दिखे रिड़की पौना खुद की
0: वो लिताई है ना जरा जंगा च जोर तो मैंने लाई लैंदा खिट है ना तो मैं तक ना गया मैं कमे गया हा जरा के पार ग्राए पाहे गया हा मैं दिखना मैं बोला क्या क्या चलिया तुहें पता हुण वोटां भी पई हैं प्रधान भी बनी है तो पता तो करना पौंदा भी कौन जितया कौन हारिया है ना खोज खबर भी
1: बिल्कुल
0: लैना पौंदी थोड़ी बहुत है ना ग्राए च रहना था है ना
1: बिल्कुल
0: कहो कि
1: बिल्कुल
0: रौनक जी इस ग्राएं से यही लगी हुई कि भाई वोटां का काम जड़ा हा चलिया हा बड़े भरी जड़ा ताई मिंजो तो पता नहीं लगा कुसी वोट पाइए कुसी वोट नहीं पाइए है ना पर फिर भी तुहां हाइया जड़े बड़े हे ना ते सलाह लई कने वोट पाई ता कने सरकार पंचायत च जड़ा सा प्रधान बनाई ते है ना तो हूँ जी इस चलो ये तो साड़ियाँ गल्ला बातें तो चलदियाँ रहनियाँ पर ताई अज कमे की गल जी जिस पर अह अपने श्रोत्या ने जानकारी देनी है सह है मधुमक्खी पालन व्यवसाय के बारे च है ना अहाँ के बड़े सारे युवा जड़े इनसे अहाँ के बड़े सारे युवा जड़े इनसे अहाँ के बड़े सारे युवा जड़े इनसे रोजगार ताई जड़ा सा मधुमक्खी पालन व्यवसाय का काम करते हैं क्योंकि मधुमक्खी पालन व्यवसाय जड़ा सा तुम्हें पता ही है बड़े सारे लोगों के जीवन च जड़ा सा इस वेले मिठास घोला दा कने अहाँ के नौजवान जड़े इनसे इस कमे ने जुड़ी के जड़ा सा एक अच्छी खासी आमदनी जड़ा सा कमा करते हैं है ना ताई कहो कि
1: जी
0: दिखा मधुमक्खी पालन व्यवसाय की गल करिए इस कमे च ना तो तुम्हें पता लाइक तो लागत भी घट लगती है ना कने दूई गल है कि जमीन भी नहीं चाहिए होंगी ज़्यादा है ना कने त्री गल ये है कि मुनाफा भी जड़ा सा बांका कने बढ़िया होंगे है ना पर तुहां किसान साथियों कोई भी काम चालू करना है तो उस तुहें जड़ा सा लगन थोड़ी उस कमे भाहे होना बड़ी बड़ी जरूरी है ता ही उस कमे च तुहें जड़ा सा सफलता मिली सकती है ना देखा देखी कुछ दी भी देखा देखी तुहां काम शुरू नहीं करना है मधुमक्खी पालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय अज के समय च बनी चुकया है कि इस दी मांग कह कि अहाँ के शहद की मांग जी है कने अहाँ का पहाड़ी शहद जड़ा है किसान साथी होती दी तो मांग ज़्यादा ही रहती है कने भाव भी जड़ा सा बढ़िया कने बांका मिली आता है ना कने दूई गल ताई ये भी होंगी है कि किसान जड़ा ऐसा मधुमक्खी जड़ा ऐसा परागण करती है कने इदी कने जड़ा ऐसा अहाँ दी फसल भी बढ़िया कने बांकी होंगी है ना
1: जी
0: कने कहो ताई ता तू नौकरियां पाहे दौड़ना है ना तुहें पता है घर बैठे अगर रोजगार मिली है कने अगर तुहां बाहर भी जाएंगे तो उत्थी तुहां दी 15-20-25 हज़ार रुपये की नौकरी लगी भी जाती है तो तुहें उत्थू रहना भी है खाना भी है पीना भी है ना 100 खर्चे होंगे है ना अगर तुहां कने सब ते बड़ी गल है कि अहां तुहें जड़ा सा अपने घरे का पर्यावरण मिलना सब ते बढ़िया साफ सुथरा कने बांका अगर तुहें इत्थू रहने तो है ना सही जी तुहां अपना काम करी के इस थोड़ी देर दिलचस्पी ले के कने सही जानकारी कने प्रशिक्षण ले के इस कमे करन ता इस कमे च कोई भी घाटा नहीं है है ना पर गल यही रहती है कि तुहां चालू भी काम करना तो वो प्रशिक्षण जड़ा सा जरूर लेना है कि इस कमे च तुहें क्या चुनौतियां आनियां ने उन्होंने चुनौतियों ने तुहां कियां निपटना है तिदी ताई तुहें जड़ा सा प्रशिक्षण च तैयार किया जाता है ना तो
1: जी
0: अहां तो यही आशा करते हैं कि अहां दे किसान जड़े ने इच्छुक किसान नौजवान जड़े ने नौकरियां ताई तां तू घुमा देता सह जड़ा सा इस कमे जो भी जड़ा सा अजमाई सकते हैं है ना ताई ता हूँ ये तो थी जानकारी कने हूँ चलना है लोकगीत पाहे है ना ताई
1: जी
0: ता
1: बिल्कुल
0: ता सुनांदे एक प्यारा दे लोकगीत है ना
1: कने सोगी सुन दे कुछ एक संदेश
0: जी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जाँच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जी श्रोताओं, इन स्नेह ते बाद फिर ते जानकारी एक तुहां ताई जरूरी सूचना जड़ा से पुजानी है ना
2: जी।
1: तो दिखा ताई उन जड़ा होने वाला रविवार है 7 जून, जो इस आरोग्यम कार्यक्रम जड़ा हंदा प्रसारित किया जाता है प्यागा 9 बजे ते 10 बजे ताई है ना
2: जी।
1: इस सजीव फोन इन कार्यक्रम होंदा है कने इस जड़ा इस वरी विषय ऐसा है बच्चे च कुपोषण कारण लक्षण कने बचाव है ना। इससे संबंधित अगर अहां दे श्रोता दे कोई भी प्रश्न तसे जड़ा से अहां दे ट्याले पर फोन करी सकते हैं है ना। कने ट्याले पर जेडे अहां दे स्टूडियो च उपस्थित रहने डॉक्टर प्रदीप अत्री, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राजकीय प्राथमिक राजकीय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टांडा कांगड़ा च है ना
2: जी।
1: ये जेडे से अहां दे आकाशवाणी दे स्टूडियो च उपस्थित रहने उस दिन है। कने अहां दे श्रोता जेडे से 7 जून जो जेड़ा से प्यागा 9 बजे ते 10 बजे ताई जेड़ा से फोन करी सकते हैं। कने अहां दा ट्याले दा फोन नंबर जेड़ा से श्रोता वो नोट करी लिया, ट्याले दा फोन नंबर जेड़ा से 0182-224-391 है ना। एक बारी फ्री ते ताई टेलीफोन नंबर तुहां दसी दिया
2: जी। ट्याले दा फोन नंबर है 0182-224-391। तो जितने भी श्रोता इस वक्त कार्यक्रम सुना करते हैं तिन्हां ते अनुरोध है कि जेड़ा 7 जून जो सवेरे 9 ते 10 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम प्रसारित किया जाना है। तो इस विच जेड़ा विषय है बच्चे च कुपोषण दे कारण क्या, लक्षण कने बचाव कियां करी सकते हैं। तो तुहां सीधे डॉक्टर साहब और ने जुड़ी के अपने प्रश्न पूछी सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो तुहां जरूर करके मतलब फोन करना है ट्याले पर, कने अपनी जड़ी भी जिज्ञासा है, कोई भी जानकारी, कोई भी प्रश्न है, तो तुहां सीधे तौर पर डॉक्टर साहब ने पूछी सकते हैं, कने जानकारी ले सकते हैं ना जी।
1: जी जी जी, तो ये तो थी जानकारी। कने उन जेड़ा
2: कने एक जेड़ा कार्यक्रम है से तुहां 103.4 MHz पता सुनी सकते हैं, लेकिन मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी आकाशवाणी का कार्यक्रम जेड़ा है सुनी सकते हैं ना जी।
1: जी जी जी, बड़ी वधिया। कने बाकी सूचना जेड़ी है सै ताई तुहां श्रोतियां तक पहुंचाई। कने अहां आशा करते हैं कि अहां दे जेड़े श्रोता न अगर तिना दे इस विषय ते संबंधित कोई भी प्रश्न तां सै उस दिन जेड़ा सै भ्यागा 9 ते 10 बजे तक फोन कॉल जरूर करके, कने अहां तुहां दी फोन कॉला दा जेड़ा सै बेसब्री ने इंतजार रहना है ना
2: जी।
1: कने हुण गल करदे हां ताई ग्राएं च, तां अज मैं ग्राएं च ओआ दा हुण ट्याले तां खेले दे मैदान च मुंडू खेला है, तां तिने दिखी के ताई मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई है ना
2: जी। बिल्कुल दिखा ना सोले आने गल तो आ गलाई है भाई। दिखा बच्चे क्या करा करदे, बच्चे क्या बड़े भी दिखा भाई, बड़े फोना च है ना जी।
1: आंजी, आंजी,
2: फोना च बड़े, फिर बोला ते सर्वाइकल हो करदी, फिर बोला पिट्ठी पीड़ हो करदी, आखियां पीड़ हो करदी है ना जी। फिर बोला ते मेंटली स्ट्रेस हो करदा, दिखा भाई मोबाइलां च बड़ी रहना 4-4, 5-5 घंटे या कंप्यूटर च टैपा च बड़ी रहना है ना जी। खेलना नहीं, कूदना नहीं, मिलना नहीं, जुलना नहीं है ना जी। ता क्या होना फिर, ये मानसिक बेकार जेड़े ने से पैदा हो जाने है ना जी। शारीरिक बीमारियां भी लग जानियां, जितना खेल गए कूद गए ग्राउंड च जांगे है ना, तो खेला बड़े अंता कुछ व्यायाम करी लिया है ना जी, सवेरे सैर करना जा है ना जी, बढ़िया ताजी हवा हिमाचल च तो दिखा भाई इतनी बढ़िया हवा है ना जी।
1: दूरे दूरे ते लोग आंदे है ना
2: जी,
1: आबो हवा लेना ऐसा है ना,
2: इतनी बढ़िया आंदी भ्यागा तू हां जा घूमना जा, इतनी अच्छी अच्छी ताजी हवा ले है ना जी। क्योंकि देखो भाई आजकल बीमारियां इतनी भरी फैली गई है ना, तरह तरह दे रोग लगे है ना।
1: कुछ एक तो यहां भुलाई ले है ना, ये जेड़े फोन वाले रोग ने।

0: पू लाए ले हाँ ना
1: जी, क्योंकि
0: क्योंकि
1: बड़े दिखा कर दे फोन तो छोटे भी बोल दे ऐसा भी दिखना बेतुसा दिखा कर दे, ता ऐसा का है पीछे रही है
0: हाँ
1: ना।
0: जी हाँ जी ठीक लाया तो हाँ, अगर समय च थोड़ी दी पीछे जाइए तो खेला दे मैदान जेड़ा से भरू दुसदे है ना,
1: बिल्कुल
0: संजा दी बेला जाइए ता क्या पिट्ठू खेला दे है ना, खो खो खेला दे, कबड्डी खेला दे है ना,
1: जी
0: कने बैडमिंटन खेला दे है ना, फुटबॉल खेला दे, क्रिकेट खेला दे, ओले ओले जेड़ा मैं ग्राएं च दिखया था ओले ओले जेड़ा सा फ्री ते एक जागरूकता नौजवाना चोना लगी कने खठूना लगी कने बड़ी बदिए कने बाकी ये गल है ना, कहे कि दिखा अगर तुहां खेलां ने जुड़ देन ता खेल एक खेल ही नहीं है, इस कने तुहां एक टीम भावना भी होंदी कि मिली के काम कियां करना है ना, कने
1: जी
0: हार भी तुहां बड़ा कुछ सिखांदी है ना, जीत ही नहीं सिखांदी, कई बारी हार जांदे ता हार भी तुहां जेड़ा सा बड़ा कुछ सिखांदी है ना, ता ही बोलदे कि खेलां दा भी जेड़ा सा अहां दे जीवन च बड़ा बड़ी जेड़ा सा महत्व है ना।
1: जी ये जिहड़ी तुहां गल बोला करदे भी हार भी बड़ा कुछ सिखांदी, तां हार दिखा एक चीज़ दा मुख्य तौर पर जिहड़े अज दे समय च अहां कमी नजर आ करदी भई, जिसी बोलदे ना कि सबर नहीं है, सबर नहीं
0: हाँ
1: है, जिसी अंग्रेजी च पेशेंस गलांदे बे,
0: हाँ जी
1: है नहीं है
0: हाँ जी हाँ
1: जरा
0: जी
1: कि मतलब कुछ हो करदा तां मतलब, या तो लड़ाई झगड़ा शुरू हुई है दिखा भई बच्चे बच्चे लड़ा करदे है
0: जी
1: ना,
0: जी जी
1: मतलब
0: जी
1: सहन शक्ति नहीं है
0: कटी हाँ जी टाई
1: ना
0: ठीक
1: जी,
0: ला
1: ता
0: दे
1: अहां छोटी छोटी जलूस है कोशिश करिए, छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए तो तिस कने सहन शक्ति भी साढ़े अंदर होनी है, क्योंकि बड़ा जरूरी है अज के समय च है ना, जितनी भाग दौड़ दी जिंदगी च थोड़ा ठहराव होना भी बड़ा जरूरी है ना जी।
0: जी दाई ठीक लाया तो हाँ, तो अहाँ तो यही आशा कर दें कि अहाँ दे नौजवान जेड़ा सा एक बारी फिर ते ना खेलां दी गतिविधियां कने ज़्यादा ते ज़्यादा जुड़ गए कने नशियां ते जेड़ा सा दूर रहेंगे है ना।
1: जी कने दूजा तो हाँ खेलां दे कने कने दिखा भी प्रकृति कने जुड़ा है ना
0: हाँ जी
1: जी,
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी
1: हाँ पेड़ पौधे लगाने का शौक पाला, तो हाँ
0: जी
1: पेड़ पौधे लगा है ना जी, जितना
0: जी
1: ज्यादा हो सकते उतने लगा, क्योंकि इस कने एक जुड़ी गल ये भी है कि जितनी हुण गर्मियां पौ कर दी है बे, साढ़े जंगलों च आग कितनी बारी लगा कर दी है, आग लगने के बाद साढ़े पेड़ पौधे सुकी आ करते, कने फिर ढही आना ते ना फिर
0: जी
1: जंगलों च
0: जी
1: पेड़ कुथू ते बचने ने, कने फिर ताजी हवा भी नहीं मिलनी है ना जी, तो ये है कि असा प्रकृति ने जुड़ने कने साढ़े जेड़े खेल हैं तिन्हां ने जुड़न, ताकि अहां भी स्वस्थ रहने कने साड़ी प्रकृति भी स्वस्थ रहे ना जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक गला है, हूँ अपनी गल्ला बातें हैं ताई यहाँ फ्री ते विराम देना है कि ना किसान साथी ले चल दे एक लोक जनकार पाए, पर उससे पहले एक संदेश है ना।
1: जी

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओ, इसी प्यारे दे मिठे दे लोक गीत कन्नै अहां दा जिहड़ा सा समय इत्थे संपन्न होआ दा। जाने ते पहले दस दईए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग दिता विकास पठानिया होरां, प्रस्तुति जिहड़ी है सै जतिंदर पाल सिंह होरां दी, उहनां दुनिया दी अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा। दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर वी के पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा।
1: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास,

0: तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत-बहुत नमस्कार।
0: तो धन्यवाद जी। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर पॉल आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
0: जी,
1: विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
0: जी,
1: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता खास नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
0: जी,
1: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं।
0: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
0: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
0: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
1: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
0: जी,
1: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
0: जी।
1: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको की एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की उसके साथ जोड़ के वयो वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
0: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
0: जी,
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको

0: टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जा करके यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं,
1: जी
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ नहीं हुआ है लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है अभियान है उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो
1: जी
0: यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही
2: मैंने
1: है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं।
1: जी
2: पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा।
1: जी
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं
1: जी
2: जो होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं।
1: हम्म,
2: तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना उनकी सोच लेके आए। जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों के, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक,
1: जी
2: इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में, 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है उस पर, 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आंख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस की बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाए। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे
1: जी,
2: एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास एएनएम थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। ये इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली बीएससी पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
2: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और पीएचसी वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चलने ही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लानेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएम से जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
2: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
2: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने 3 कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
0: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या 1 से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए हैं, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहाँ से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं। इन सारे में ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेलीमेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेलीमेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती हैं, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेलीमेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेलीमेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा one of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी, जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था, और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है, तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं, और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं, उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें, जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो वॉट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है, उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है, ग्राउंड से जो रिस्पांस है, हमारा जो IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
2: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी,
2: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जो जायजा है वो हम रुपये में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:45 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।

0: प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस व भाजपा में जीत के दावों का दौर जारी। कांग्रेस ने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से किया इनकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, जनाधार खो चुकी है राज्य सरकार, प्रदेश भर में कांग्रेस को मिली करारी हार। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए तैयार की नीति, मंत्रिमंडल की बैठक में होगी चर्चा। प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथ व विधवाओं के कल्याण पर खर्च करेगी सरकार। और बेनतीजा रही नगर निगम शिमला की वार्षिक आम बैठक, चर्चा के बाद आगामी रणनीति तय करेंगे सहब सोसाइटी के कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में 8 में से सिर्फ 4 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं और इन्हें विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहना गलत है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रधान जीते हैं, लेकिन पंचायत की असली ताकत वार्ड मेंबर की होती है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान, उप प्रधान और सभी वार्ड मेंबर का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से इनकार किया।
3: पहली बात तो ये है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं, ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए, ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए, 4 के चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के लोग है जीते हैं, 1 में हमारे भी जीते हैं। तो ये तो जो है किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था।
2: पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से खालसा टैक्स वसूलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इस तरह की अवैध वसूली पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत की है और इस मामले को उचित स्तर पर उठाया जा रहा है।
3: ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे, वो तो पंजाब सरकार को देखना कि ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की जो है कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है, हम उसका जो आलोचना करते। माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।
2: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार अपना जनाधार खो चुकी है और सरकार की नीतियों से लोग तंग आ गए हैं। उन्होंने आज कुल्लू में प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा के साथ पंचायती राज व नगर निकायों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में अपनी जीत के खोखले दावे कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि प्रदेश भर में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की बुरी तरह हार हुई है।
4: बहुत बड़ा संदेश है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को कि आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है और खासतौर से मुख्यमंत्री जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के, क्योंकि जन विरोधी नीतियां पूरे हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो जनता के ऊपर थोपी गई, जो फैसले लिए गए, जिनके कारण हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है वो रोष है, आक्रोश है लोगों के बीच में, वो जाहिर हुआ इन चुनावों में। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी, उस मजबूत आधार जो है इस चुनाव के परिणाम के साथ रखा गया।
2: चंबा नगर परिषद में भुवनेश्वरी गुलाटी को अध्यक्ष और जितेंद्र सूर्या को उपाध्यक्ष चुना गया है। ये दोनों कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं और इन्हें 7-7 मत प्राप्त हुए हैं। भुवनेश्वरी गुलाटी ने कहा कि चंबा शहर को स्वच्छ बनाना व सड़कों का सुधार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चंबा में वर्षों पुराने कूड़ा संयंत्र निर्माण की मांग को भी जल्द पूरा किया जाएगा।
5: सबसे पहले तो मैं अपनी चंबा की समस्त जनता का तह दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला जनता की सेवा करने का, और स्वच्छ, सुंदर और विकसित चंबा बनाना मेरा सपना है। और चंबा को एक, हम जितने 10 सालों में कार्य नहीं हुए, मैं चाहूंगी कि हम 1.5-2 साल में वो कार्य करके दिखाएंगे। पारदर्शिता सबसे जरूरी है, वो हम रखेंगे।
2: प्रदेश मंत्रिमंडल की

0: बैठकों में लिए गए निर्णयों में से 99% निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित किए जा चुके हैं। शिमला में आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। नेगी ने बताया कि 13 जनवरी 2023 से 25 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 99% निर्णय कार्यान्वित किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष निर्णयों को समयबद्ध संचालित करने के निर्देश दिए। एक अन्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लघु व सीमांत किसानों के लिए भूमि नीति पर चर्चा की गई। जगत सिंह नेगी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए नीति तैयार कर ली गई है और इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हरित पंचायत पहल अब राज्य भर के अनाथों और विधवाओं का कल्याण करेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल के सामाजिक कल्याण पक्ष को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने राजस्व वितरण मॉडल में संशोधन करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों को 500 किलोवाट क्षमता की भूमि आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से प्राप्त आय का 20% राज्य सरकार को दिया जाएगा, जबकि 25% हिस्सा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश भर के लगभग 100 युवा इन दिनों किन्नौर जिले के दौरे पर हैं। एक सप्ताह तक ये युवा अलग अलग गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बिहार, दमन व दीव, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
1: देश भर से आए करीब 100 युवा हफ्ते भर तक किन्नौर की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, विरासत, राजनीतिक महत्व और परंपराओं से रूबरू होंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत किन्नौर के इस भ्रमण के दौरान युवाओं को यहां के अलग अलग गांव में जाकर स्थानीय लोगों, पंचायतों, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों से मिलने का भी अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित माय भारत द्वारा किया गया है। आकाशवाणी के किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: नगर निगम शिमला में सहब कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आज वार्षिक आम बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सहब सोसाइटी के सभी निष्कासित कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सहब कर्मचारियों के वेतन में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी बैठक में आया है। दूसरी ओर सहब कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि इस बैठक में शहरी विकास मंत्री और स्थानीय विधायक शामिल नहीं हुए, इसलिए वे इस बैठक को एजीएम नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों के साथ बातचीत के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। शिमला में एक तहबाजारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीटू से संबंधित रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर इस मुद्दे पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन का आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई व कर्मचारियों द्वारा पैदा किए गए खौफ के कारण इस तहबाजारी की मौत हुई है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को देश में कहीं पर भी काम करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि 31 मई को नगर निगम की कार्रवाई के दौरान चंदन नामक विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया और पिछले कल उनकी मौत हो गई।
2: देश के अंदर एक कानून है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो 2014 में बनाया गया। ये कानून की मूल भावना क्या है कि किसी भी तहबजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता बल्कि उसको बसाना है। इसके बावजूद आए दिन जो कार्रवाई नगर निगम प्रशासन करता है, जहां गाड़ियां दौड़ाता है, लोगों के पीछे भागते हैं, उनका सामान छीनते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, 31 मई को 3:30 बजे आईजीएमसी के पास जो साथी चंदन और दूसरे साथी जो वहां काम करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, वो साथी जो अपना सामान समेट रहे थे और उसी अफड़ा-दफड़ी में गिर गए, वो वहां पर घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई। हम ये कहना चाहते हैं ये गैर इरादतन हत्या है।
0: सनराइज सोशल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एसोसिएशन ने कुल्लू जिले में पिछले वर्ष क्षतिग्रस्त हुई बागीपुल निर्मंड अवेरा चंभू नहर को जल्द दुरुस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुभाष मोहन सनेही ने कहा कि क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए ये नहर अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रशासन के उदासीन रवैये से किसान बागवान परेशान हैं। सनेही ने कहा कि इस नहर के क्षतिग्रस्त होने से इलाके के हजारों किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस व भाजपा में जीत के दावों का दौर जारी। कांग्रेस ने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से किया इनकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, जनाधार खो चुकी है राज्य सरकार। प्रदेश भर में कांग्रेस को मिली करारी हार। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए तैयार की नीति, मंत्रिमंडल की बैठक में होगी चर्चा। प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथ व विधवाओं के कल्याण पर खर्च करेगी सरकार। और बेनतीजा रही नगर निगम शिमला की वार्षिक आम बैठक, चर्चा के बाद आगामी रणनीति तय करेंगे सहब सोसाइटी के कर्मचारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। वन लगाएं, पर्यावरण बचाएं, ये संदेश सबको बताएं।

वनों की ताज़ी हवा हमारे पर्यावरण को शुद्ध करती है, बारिश में हमारी मदद करती है, कड़ाके की धूप में हमें छांव देती है।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए वनों का महत्व विषय पर डॉक्टर संजय सूद, वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश से भेंट वार्ता कर रहे हैं सपना ठाकुर।
1: हिमाचल प्रदेश से भेंट करता सपना ठाकुर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुरा धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है।
2: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। समूचा हिमालय क्षेत्र देश को ऑक्सीजन देने और पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि वनों से वायु और वायु से आयु का सीधा संबंध है। वन यानी जंगल हमारे जीवन के आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सरोकारों का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे वनों के महत्व पर। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर संजय सूद जी। आप वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश हैं। डॉक्टर संजय सूद, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर संजय सूद, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिमाचल के संदर्भ में वनों का क्या महत्व है और इसके संरक्षण और प्रबंधन में वन विभाग द्वारा क्या गतिविधियां की जा रही हैं।
3: सप्ता जी, सर्वप्रथम आप सभी को और श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात की है कि हिमाचल के वनों का क्या महत्व है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल के वनों का एक असीम महत्व है, पूरे प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए या पूरे देश की दृष्टि से देखा जाए। भौगोलिक तौर पे अगर आप देखें तो जितना हमारा भौगोलिक क्षेत्र है हिमाचल का, वो लगभग 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से कानूनी तौर पर करीब 2/3 से अधिक, लगभग 68% जो हमारी भूमि है वो वन भूमि के अधीन आती है। लेकिन अगर आप हरित आवरण की बात करें, जिसमें वहाँ के वृक्ष अच्छे वृक्ष हैं, तो वो करीब 28% जो हमारा क्षेत्र जो है वो वनों से आच्छादित है। और अगर इसमें एक ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट होता है उसको भी जोड़ दिया जाए तो ये जो आंकड़ा है ये लगभग 29.5% का बन जाता है। तो वनों से हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे प्रत्यक्ष रूप से लाभ हमारे को मिलते हैं। हिमाचल के लगभग 90% लोग जो हैं वो वनों पर निर्भर है, उनकी निर्भरता रहती है। उसमें उनको चारा मिलता है, पशुओं के लिए जो है, और फिर इमारती लकड़ी उसमें से आती है, हमारा बालन उसके अंदर से आता है, जड़ी बूटियां हमें वनों से प्राप्त होती है। ये सब तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अगर आप इसके अप्रत्यक्ष लाभ, जिसकी आपने बात की हुई, वायु की आपने बात की, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये जो है। एक वृक्ष, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक वर्ष में लगभग 2,73,000 किलो ऑक्सीजन देता है, 50 वर्ष का कोई वृक्ष होता है। और ये आंकड़ा इतना है कि इससे 2 लोगों को जीवन वायु प्रदान होती है।
2: जी बिल्कुल।
3: जितना व्यक्ति एक अपनी सांस लेने में काम आता है उसको लगभग 1,30,000 किलो चाहिए, तो एक वृक्ष 50 वर्ष का 2,73,000 किलो ऑक्सीजन प्रतिवर्ष देता है। इसी तरह से जो हमारा जल चक्र है उसको संतुलित करने में वनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए, हमारा जब मत्स्य पुराण की हम बात करते हैं उसमें लिखा हुआ है, दशा कूपो समा वापी, दशा वापी समा हृदा, दशा हृदा समो पुत्र, दशा पुत्रो समाद्रुमा। मतलब आप 10 जो कुएं बनाने की जगह एक बॉडी बनाइए, 10 बौड़ियां बनाने की जगह एक तालाब बनाइए, और 10 तालाब भी जितना आपको अपना पानी इकट्ठा करके नहीं दे सकते, उतना अकेला एक वृक्ष वो अपने जमीन से उसको सोख कर अपने जल चक्र में प्रभावित करता है। तो एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहता है। प्रदूषण नियंत्रण जो है वो वनों से होता है, तभी जो अच्छे वन है वहाँ प्रदूषण कम होगा। इसी तरह से आप देखो तो जो हमारे पशु पक्षियों की प्रजातियां बहुत सारी, वो सब वनों पर निर्भर करती हैं। एक वृक्ष के ऊपर कम से कम 250 प्रजातियां पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, वो निर्भर रहती हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है। इस सब का मूल्यांकन किया जाए तो करीब वर्ष 2000 में इसमें एक साइंटिफिक शोध हुआ और ये पता लगाया गया कि एक वृक्ष की कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपए बनती है। आपको ये आंकड़ा लगभग दुगना हो चुका होगा इस बारे में। तो एक इतना बड़ा महत्व वनों का है। और हिमाचल की वनों की जहां की आप बात करें, ये सब तो हमें देते ही देते हैं, पर मैं समझता हूं कि हिमाचल के वन ना केवल हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो पूरे हमारा जो मैदानी क्षेत्र है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है।
2: जी।
3: क्योंकि जितने भी हमारी मुख्य नदियां हैं हिमाचल की, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ये सब हिमाचल के वनों से होकर निकलती हैं। और इससे अगर ये वन नहीं होंगे हमारे, तो बहुत सारा भूमि कटाव होगा, जिससे हमारा मैदानी क्षेत्रों में जो हमारे अन्न का उत्पादन है वो बहुत अधिक तरह से प्रभावित होगा। तो इसकी बहुत आवश्यकता है हिमाचल के वनों की।
2: डॉक्टर संजय सूद, जैसे कि आपने कहा कि वन हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से हमारी सहायता करते हैं, पर्यावरण संतुलन में वनों का विशेष महत्व है और वृक्षों का भी विशेष महत्व है, तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए हमें वृक्षों को किस तरह बढ़ाना है, किस तरह से उन्हें लगाते जाना है। कहते हैं एक अगर पेड़ आप लगाते हैं तो पर्यावरण और शुद्ध होता जाता है।
3: बिल्कुल ठीक कहा कि ये तभी संभव है, पर्यावरण को शुद्ध रखना ये अकेला एक विभाग का दायित्व नहीं है, पूरे समाज का दायित्व है।
2: जी बिल्कुल।
3: तो इसमें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अगर हमारे समाज के लोग आकर जुड़े। बहुत सारी योजनाएं इस बारे में हमारी जो सरकार चला रही है इसमें, जिसमें कि लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है
2: जी।
3: और उन योजनाओं के माध्यम से हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं उसके अंदर जो है
2: जी।
3: तो सभी लोग अगर वृक्ष लगाएं, कम से कम 5 वृक्ष लगाएं, उनका जो है संरक्षण करें, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा योगदान समाज के।
2: बिल्कुल, जैसे कि आपने संरक्षण की बात की, तो वनों के संरक्षण में जो स्थानीय लोग हैं उनकी अहम भूमिका रहती है। तो इस उद्देश्य से जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा क्या योजना चलाई जा रही है? राजीव गांधी संवर्धन योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
3: देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लगभग जो हमारा जो वन आच्छादित क्षेत्र है, जो हरित जो हमारा क्षेत्र है, वो लगभग इस समय 28% का है।
2: जी बिल्कुल।
3: तो इसको हमारा जो लक्ष्य है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बजट स्पीच में कहा कि हमारा मिशन 32, वो इसको जो है बढ़ाकर 32% करना चाह रहे हैं हम लोग, और ये आने वाले 4 या 5 वर्षों में हमने ये पूरा करना है,
2: यानी 2030
3: से 2031 तक। तो ये कठिन कार्य है, लेकिन लोगों की सहभागिता से निश्चय ही हम ये पूरा कर सकते हैं
2: जी।
3: तो आपने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की बात की, बहुत अनूठी और बहुत बढ़िया योजना हमारी सरकार ने इस बार में चलाई हुई है। पिछले साल इसको शुरू किया गया, पूरे प्रदेश में लगभग 1100 हेक्टेयर पे हमने बहुत सारे महिला मंडल, 300 महिला मंडल से अधिक, इसी तरह से युवक मंडल और अन्य स्वयं सहायता समूह जो है उनके माध्यम से प्लांटिंग करी। पर प्रति हेक्टेयर जो है प्लांटिंग का खर्चा लगभग 1,20,000 रुपये आया, तो लोगों द्वारा ही सब कार्य किया गया। और इसमें ये सबसे अनूठी बात यह है कि अगर जीवित प्रतिशतता अगर आने वाले समय में अच्छी रहती है तो लोगों को इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, और 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के लिए बहुत बड़ी बात है लोगों को वनों से जोड़ने के लिए। ऐसी योजनाएं हम चला रहे हैं तो इससे बड़ा फायदा हो रहा है। इसी तरह से एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, वो भी हमारे प्रदेश में चल रही है। तो जो हमारे सूखे क्षेत्र हैं, पथरीले क्षेत्र हैं और ऐसे जिसमें सॉइल इरोजन ज्यादा है, उन क्षेत्रों को हम पकड़ रहे हैं। उनमें काम करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इंटेंसिव इनपुट्स के साथ में हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिछले साल हमने करीब 100 हेक्टेयर एरिया पकड़ा था, हमारे को अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिले हैं। तो अगर ऐसी भूमि को हम वृक्षों से आच्छादित करने में सक्षम हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ हम भी लक्ष्य पूरा कर पाएंगे,
2: यानी चारों तरफ हरियाली ही।
3: जी, ये होना तो यही चाहिए। बिल्कुल
2: सूजी, जैसे आपने कहा कि हमारे प्रदेश में 28% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है, तो इसके आवरण को बचाने और इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
3: इसको बचाने के लिए तो हमारे पास लगभग पूरे स्टेट में 2,059 फॉरेस्ट बीट्स हैं, तो उसमें हमारे फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं। हमें यहाँ पर वन मित्रों को भी अभी सरकार ने नियुक्त किया है।
2: वन मित्र की आपने बात की, तो इनका क्या कार्य रहता है?
3: इनका देखिए, ये जो वन मित्र थे ये लोकल लोग हैं, वहीं के मेरिट के आधार पर उनको सिलेक्शन किया गया है। तो ये जो हमारा फॉरेस्ट का जो हमारा लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ये लोगों की मदद करते हैं, हमारे लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग हैं, इनको पूरी जानकारी वहाँ की रहती है। स्थानीय लोगों को कैसे वानिकी योजनाओं से जोड़ना है, कैसे वनों की प्रोटेक्शन करनी है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, उसमें ये सहयोग कर रहे हैं। तो एक तो ये हमारी इस तरह की चीज़ है। हमारे पास जो मैंने बताया आपको 2,059 फॉरेस्ट बीट्स हैं, उसमें हमने अपने गार्ड्स को नियुक्त कर रखा है। उसके ऊपर डिप्टी रेंजर्स हैं, हमारे रेंज ऑफिसर्स, एक पूरी एक लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक पूरा सिस्टम है जो कार्य करता है। तो कहीं भी कोई वनों को नुकसान आदि की कोई समस्या रहती है या ऐसी कोई शिकायत रहती है, तो हम मिलजुल कर इसके प्रयास करते हैं कि वैसा ना हो, तो वनों का संरक्षण एक सुचारू तरीके से,
2: यानी वनों का संरक्षण और विस्तार जो है होता रहे। ये विस्तार को लेकर और संरक्षण को लेकर भी आपके समक्ष चुनौतियां आती
3: हैं? बिल्कुल आती हैं। अभी मैंने कहा कि चुनौतियां बहुत सारी हैं। अब मैंने आपको कहा कि देखिए क्षेत्र तो लिमिटेड है, अब उसको हमने बढ़ाना है।
2: बिल्कुल।
3: तो अब जो हमारे पास बचे एरियाज हैं, वो एक तो पथरीले एरियाज हैं, सूखे एरियाज हैं, उसमें जो है सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक तो ये बात है, ऊपर से हमारी जो वन अग्नि है ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या है। तो इन समस्याओं के बीच भी हमने आवरण को बढ़ाने में सहयोग करना है, लोगों को भी साथ लेके चलना है, तो वो हमारे लिए एक चुनौती तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम इस चुनौती को अच्छी तरह से पार कर पाएंगे।
2: डॉक्टर संजय सूद, जैसे कि हम वनों के संरक्षण विस्तार की बात कर रहे हैं और वृक्षों की भी बात कर रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तो बात करते हैं कि हर एक वर्ष गर्मी जब मौसम आता है वनों में आग लगने की समस्याएं जो है घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वनों को नुकसान पहुंचता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और क्यों ये आग लगती है हर वर्ष?
3: देखिए, आपने बड़ा एक प्रासंगिक प्रश्न मुझसे पूछा है। देखिए, जैसे अब गर्मी आती है, टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, जब तापमान बढ़ता है तो नमी भी कम हो जाती है, और जब नमी कम होती है तो बहुत सारे सूखे पत्ते चिलारू इत्यादि वनों में फैल जाते हैं, उनकी बहुत तादाद बढ़ जाती है, उस कारण से ये ज्वलनशील हो जाता है, तो वनों में आग लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया सी बन जाती है। लेकिन ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इन आग की घटनाओं में काबू पाया जा सके, उसके लिए भी बहुत अच्छा हमने जो हमारा एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर इस वर्ष की बात करें तो कुछ देखिए कुछ दिनों के टेम्परेचर बढ़ा तो 337 घटनाएं हुई, तो उसमें थोड़ा नुकसान भी हुआ हमारा, करीब 1300 हेक्टेयर जो एरिया है वो पूरा इम्पैक्ट हुआ उसके अंदर, और उसमें 300-400 हेक्टेयर की प्लांटेशंस भी हमारी इम्पैक्ट हुई थी उसके अंदर, करीब करीब 1,19,00,000 रुपए का नुकसान भी हुआ, जो प्रारंभिक है। कुछ समय के बाद जब बारिश होती है तो ये नुकसान फिर कम हो जाता है, क्योंकि कुछ पौधे दोबारा से जीवित हो उठते हैं उस समय में। अब इनको इन घटनाओं पर काबू पाने के लिए मैं दो तीन पहले तो कहना चाहूँ क्यों होती है वनों में आग की घटना। एक तो इंसानी गलती से हो जाती है, कोई बीड़ी सिगरेट जलाता हुआ छोड़ देता है उससे हो जाता है, कभी लोग शहद आदि इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाते हैं वहाँ कोई जली हुई चीज वहाँ छोड़ देते हैं, धुआं इत्यादि देने के लिए लगाते हैं, जो उस कारण से ये आग ज़रा फैल जाती है। दूसरी कभी कभी शरारती तत्व भी इस विषय में काफ़ी उनका भी बड़ा सारा योगदान रहता है, वो भी कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं, उसे हमें रोकना है, मेन चीज़ तो ये है। और तीसरा प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, कभी कोई बिजली गिर जाती है जंगलों के ऊपर या कोई पत्थरों में घर्षण हो जाता है, उससे भी आग की संभावना हो सकती है। तो तीनों चीजें देखी गई हैं, लेकिन जो रोकने की बात है कि शरारती तत्व जो हैं उनको इस विषय में रोका जाए, तो इसमें कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। अगर कोई जंगलों में आग लगाता है तो उसको मतलब 2 साल की सजा तक हो सकती है, 5,000 रुपये जुर्माना तक हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: और उनके जो लोगों के जो आग लगाते हैं उनको अगर पकड़े जाएं तो उनके हकूक जो होते हैं जैसे TD इत्यादि है वो भी अगले कुछ वर्षों के लिए बंद की जा सकती है। तो इस तरह के प्रावधान हैं, कोशिश भी की जा रही है। और फिर हमने कुछ वॉलंटियर्स हैं, करीब 90,000 वॉलंटियर्स हैं पूरे स्टेट में, जब आग लगती है उस समय आग बुझाने में हमारा सहयोग करते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स वगैरह सब डिटेल्स हमारे पास हैं, तो जहाँ भी आग लगती है उनको सूचना दी जाती है और वो काफ़ी हद तक हमारा साथ भी देते हैं। इसी तरह से एक कंट्रोल रूम हमने पूरे स्टेट में बनाया जो कि पूरा दिन चलता है 24/7, वो बिलासपुर में लोकेटेड है, उसका नंबर है 1800-180-1916। तो आग की कोई भी सूचना या जानकारी उस कंट्रोल रूम पर दी जा सकती है और फिर उसके आगे जो है फिर कार्रवाई उस कंट्रोल रूम से बाकी के जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको दी जाती है।
2: स्थानीय लोगों में जन जागरूकता और जन सहयोग की भूमिका अपेक्षित है।
3: बिल्कुल अपेक्षित है। जो वन है वो हम सबकी धरोहर है, किसी विभाग के नहीं है, वन तो हम सबके हैं, और हिमाचल इसीलिए भी सुंदर माना जाता है कि उसमें वन अच्छे हैं।
2: जी।
3: तो जब तक लोग स्थानीय लोग हैं उनके संरक्षण में आगे नहीं आएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा इस चीज को काबू पाना जो है।
2: हमारे प्रदेश की सुंदरता हरियाली है।
3: जी जी जी।
2: तो स्वच्छ पर्यावरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए स्वच्छ पर्यावरण में देखिए प्रकृति के 5 तत्व हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: उसमें सबसे पहले भूमि आता है, फिर वायु आता है, फिर आकाश आता है, फिर अग्नि आता है, और फिर नीर आता है। इसका अगर पहला शब्द आप सब जोड़ दें तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आपकी अग्नि, और न से नीर, तो ये भगवान इसी से बनता है। तो मैं समझता हूँ कि इन 5 तत्वों को जो सबसे बड़ा सामंजस्य जो बना के रखता है, जो इकाई पूरी एक सृष्टि में वन है, तो सामंजस्य इसी में देखा जाएगा।
2: बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति और वृक्षों में ही देवता निवास करते हैं, हम देवभूमि में रहते हैं।
3: बिल्कुल देवभूमि में रहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं, चाहे आप सकंद पुराण में देखें चाहे यजुर्वेद में देखें, उसमें वृक्ष को कितनी बड़ी महत्वता दी गई है, जिसमें कहा गया मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्रो महेश्वरा पातले पातले देवानाम वृक्ष राजनमस्तुते, जिसके मूल में ब्रह्मा का निवास है, तने में भगवान विष्णु का निवास है, और शाखाओं में भगवान शंकर का निवास है, पत्ते पत्ते पर देवता निवास करते हैं, हे वृक्ष हम आपको नमस्कार करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो वृक्षों से ही तो सब कुछ है हमारे जीवन में जो है। अगर वृक्ष अच्छे नहीं होंगे तो शायद ये जीवन एक तरह का सार्थक नहीं रह जाएगा हम लोग पूरे प्रदेश।
2: बहुत बढ़िया बात कही, हम सबको मिलकर अपने वनों को बचाना है, वृक्षों को लगाना है, तभी हम अपने पर्यावरण की सही देखभाल कर
3: पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ पर्यावरण दिवस कल है, कल हम एक नया कार्यक्रम जिसमें चिनार के वृक्ष हम पूरे शिमला आसपास लगाने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं वो उसका शुभारंभ करेंगे, आगे भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से बुरांश के वृक्ष हम आगे लगाने जा रहे हैं, और बहुत सारी प्रजातियां जो शिमला के आसपास होती हैं लगाई जाएंगे। ये जो चक्र है ये इसी तरह की हमें पूरे प्रदेश में इस तरह की बात करेंगे। तो मेरा सिर्फ लोगों से अपेक्षा रहेगी कि कम से कम 5 वृक्षों को लगाइए, उनका संरक्षण कीजिए, आप प्रकृति को इतना बड़ा योगदान कर देंगे जो अन्यथा आप कर नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं कर पाते वो जो है,
2: क्योंकि जब तक प्रकृति है तभी तक हम हैं।
3: बिल्कुल
2: जी, हमारी पहचान भी प्रकृति से ही है। डॉक्टर संजय सूद, बात आती है कि TD है क्या, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और TD प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है?
3: देखिए TD एक तरह का हक हकूक है लोगों का जो जंगलों के आसपास रहते हैं। तो देखिए उसमें ये प्रक्रिया ये है कि अगर आपको TD की आवश्यकता है तो आपको एक बार जो है 7 क्यूबिक मीटर TD दी जाती है शुरू में मकान बनाने के लिए, और फिर 5 वर्ष बाद अगर आप चाहें तो आपका मकान के रिपेयर्स के लिए भी 5 क्यूबिक मीटर टीडी दी जाती है, पर बशर्ते कि उसके लिए पेड़ उपलब्ध हों।
2: जी बिल्कुल।
3: और अब तो क्योंकि ग्रीन पेड़ों पे सभी तरह से बैन है, तो पेड़ उपलब्ध होने चाहिए तो सूखे होने चाहिए, गिरे पड़े पेड़ होना चाहिए, तो लिमिटेड है। ये नहीं कि ये अनलिमिटेड अधिकार, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी ने टीडी अप्लाई की तो उसको देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो सिल्वीकल्चरल अवेलेबिलिटी, जिसको हम एक शब्द बोलते हैं फॉरेस्ट्री में, कि अगर वो पेड़ उपलब्ध होगा तो दी जाएगी, और प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिसको सबसे अधिक आवश्यकता हो। और एक अधिकार है तो एक जिम्मेवारी भी है, और उन्हीं लोगों को ये अधिकार दिया जा सकता है जो वनों के संरक्षण में, आग बुझाने में और अन्य चीजों में वन विभाग का सहयोग करें।
2: जी,
3: इस तरह की बात है। तो टीडी अच्छी चीज है, जो लोगों को जो इतने ज्यादा सानिध्य नहीं, उनको नहीं है जिनके जीवन में, उनको टीडी दी जाती है, पर एक नियम के अनुसार दी जाती है। उसके लिए उनको एक अप्लाई करना तो पड़ता है फॉरेस्ट गार्ड के थ्रू, फिर रेंज ऑफिसर उसको चेक करता है, फिर डीएफओ का अधिकार है टीडी देने का, जो कि पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए टीडी को स्वीकृत करता है।
2: बहुत सही बात की, जो अच्छा काम करेगा उसी को इनाम प्राप्त होगा।
3: जी जी बिल्कुल।
2: सूजी, वर्तमान सरकार इको टूरिज्म को अधिक बढ़ावा दे रही है, तो हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को लेकर क्या संभावनाएं हैं?
3: देखिए, आपने बहुत एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा। इको टूरिज्म मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ टूरिज्म, इसकी अपार संभावना हिमाचल प्रदेश में है। अभी पिछले साल हमने कुछ स्टडी करी और 136 साइट्स पूरे हिमाचल में निकाली जहां पर की इको टूरिज्म की संभावना है। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और जो हमारे बहुत सारे जहां ऐसे क्षेत्र हैं, शिमला है आपका, मनाली है, कुल्लू है, जहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा लोग आने लगे हैं, तो उसको भी कम करने में सहायता मिलेगी हमको, क्योंकि लोग और दूसरे डेस्टिनेशन पर भी जाएंगे। और एक तो प्रकृति को इससे बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ इसमें स्थानीय लोगों की रोजगार भी, की आय के साधन भी बढ़ते हैं, उनको भी आय के साधन बढ़ते हैं, ताकि फिर वो अपना स्वरोजगार की तरफ जा पाएं और फिर अपनी जीवन यापन जो है अच्छी तरह से कर पाएं। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। एक इसी तरह से पीपीपी मोड में पिछले 2 सालों में हमने 17 साइट्स लोगों को दी हैं, जिसको डेवलप किया जा रहा है पूरे जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारी एक्ट्स रूल्स हैं उसके हिसाब से, और 50 साइट्स अभी हम और अगले कुछ ही दिनों में आवंटित करने जा रहे हैं। एक प्रॉपर प्रक्रिया है, इसमें एक कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग प्रोसेस होता है, फिर उसमें से देखा जाता है कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा सक्षम है इस साइट को चलाने के लिए, उसको साइट दी जाती है, और पहले 10 साल के लिए दी जाती है, और फिर अगर उसका कार्य अच्छा रहता है तो उसको अगले 5 साल के लिए और बढ़ाया जाता है, तो 15 वर्ष के लिए वो साइट्स 1 हेक्टेयर की साइट्स लोगों को दी जाएंगी, ताकि वो इको टूरिज्म की व्यवस्था वहां कर सकें, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें और स्थानीय लोगों को भी उससे आए जो साधन उससे अधिक हो पाए।
2: इको टूरिज्म के लिए प्रदेश में क्या कोई विशेष स्थान चिन्हित किए गए हैं, और इस योजना से कैसे लाभ उठाया जा सकता है, कैसे लोग संपर्क कर सकते हैं?
3: देखिए, मैंने आपको कहा कि हमने पिछले वर्ष स्टडी किया था, तो 136 स्थान हमने इसमें पूरा चिन्हित किए हैं, 136 साइट्स को चिन्हित किया था, क्योंकि यहाँ संभावनाएं अधिक हैं, और ये रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है, वाटर अवेलेबिलिटी वहां पर है, और साथ ही साथ बिजली इत्यादि भी है, तो ये साइट्स हमने चिन्हित की हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस योजना का फायदा उठाना चाहता है तो हमारे जो इको टूरिज्म कार्यालय है उससे संपर्क कर सकते हैं वो लोग, और फिर जितनी भी हम साइट्स आवंटित करते हैं वो उसके लिए एक प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस होता है, पहले प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होगा, फिर उसके बाद में टेंडर होगा, तो उस टेंडरिंग प्रोसेस में कोई भाग ले सके, और उसमें अगर वो सबसे आगे है तो उसको दी जाती है वो साइट जो है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के तहत किया जाता है।
2: संजीव सूजी, कल 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इस अवसर के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
3: देखिए, मैंने आपको कहा कि जो जीवन को शब्द को अगर संधि विच्छेद करें तो जीव जमा वन, जब जीव में वन का संधि हो जाती तभी जीवन बनता है, तो अगर पर्यावरण को बचाना है तो आपको फिर वनों को बचाना ही पड़ेगा। वन नहीं है तो हमारी जीवन भी काफी फिर लिमिटेड हो जाता है। तो मेरा संदेश सिर्फ इतना ही रहेगा कि हर व्यक्ति जो वानिकी कार्यक्रमों में वन विभाग का साथ दे, कम से कम 5 वृक्ष हर साल लगाए, और ना केवल लगाए उसका संरक्षण भी साथ साथ करे, बच्चों की तरह उसको पाले, बच्चों की तरह उसको पालेंगे तो वो भी आपको फिर बाद में आने वाले समय में आपको पालेगा। तो ये एक तरह का संदेश है कि आप उसको जैसा आप मान सम्मान वृक्षों को देंगे वैसा ही आपका
2: वापस मिलेगा,
3: आपको वहां से वापस मिलेगा, तो उसमें आगे आप साथ आए और हम साथ मिलकर चलें, तभी हिमाचल एक सुंदर, स्वच्छ और समृद्ध हिमाचल आगे बनेगा, यही मेरी कामना है, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन विभाग आगे बढ़ रहा है और सभी हिमाचल वासियों से इसी सहयोग की अपेक्षा रखता है।
2: डॉक्टर संजय सूद, आज हमने वनों के महत्व विषय पर आपसे जानकारी हासिल की, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे वनों का महत्व विषय पर डॉक्टर संजय सूद, वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश से भेंटवार्ता। भेंट करता थी सपना ठाकुर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुरा, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
0: अभी आप सुन रहे थे वनों का महत्व विषय पर डॉक्टर संजय सूद, वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश से भेंट वार्ता, जो कि आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिली की गई FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति भूपेंद्र सिंह मिताली सिंह के युगल स्वरों में गाई ये गजल।

अभी आपने सुनी भूपेंद्र सिंह व मिताली सिंह की आवाजों में गाई ये गजल। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले आइए सुनते हैं ये प्रोमो।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में गाया ये देशभक्ति गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही शब्बीर कुमार की आवाज में।

अभी आपने सुना शब्बीर कुमार की आवाज़ में गाया ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

बी परार्क। सुनिधि चौहान व साथियों को अभी आपने सुना इस देशभक्ति गीत में, और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज,

0: उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से

0: अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म्स से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the Chief Ministers of Northeastern States to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number one, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top three. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
8: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
7: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Union Home Minister Amit Shah today said the Narendra Modi government entered the era of violence in the Northeast and transformed the region from a hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, or NEC, Mr. Shah, in a social media post, said today that NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture. In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens, as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning, and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade, and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said that yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship, being held at the Ekta Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said that yoga unites the mind, body, and spirit and inspires a healthier and more harmonious world.
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
7: We have a report.
6: The Ekta Arena in Ahmedabad has opened its door to more than 400 participants from 60 nations, including international contingents from USA, Ghana, Kenya, and Malaysia. Host nation India is fielding a strong 122-member squad competing across six age categories from sub-juniors to senior masters. In a global first for the sport, an advanced electronic scoring system has been introduced to ensure absolute transparency in judging every posture, balance and flow. This championship signifies a major transformation for Yogasana, elevating it from a discipline of spiritual wellness into a highly technical, competitive sporting event aimed at Olympic movement. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
7: Defence Minister Rajnath Singh today approved a two-fold increase in financial ceiling for field commanders to strengthen operational efficiency in New Delhi. He also released the revised delegation of financial powers for the defence services, including medical and works projects. The Ministry of Defence said the revised delegation of financial powers will facilitate procurement of more than 1,25,000 crore rupees through the revenue route, in line with the current year's budgetary allocations. Union Public Service Commission has developed face authentication protocol in its endeavour to enhance the integrity of the examination process and prevent impersonation. The Commission successfully implemented face authentication during recently held Civil Services and Indian Forest Service Preliminary Examination 2026. The system enabled live, real-time authentication of candidates at exam venues through mobile phone-based verification by invigilators, ensuring seamless identification and eliminating the possibility of impersonation and malpractice. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said that India has made extraordinary strides in renewable energy, emerging as one of the world's top producers of non-fossil fuel capacity. The minister made these remarks on the event of 2 years of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, scaling the solar home to 1 crore rooftops in New Delhi. He said the main reason for the success of the scheme is that citizens of the country have understood that they can generate their own electricity on rooftops and the electricity bill can become zero. The Ministry of Parliamentary Affairs and West Bengal Legislative Assembly today signed an MOU for the implementation of National E-Vidhan Application, or NEVA, in West Bengal Assembly at Parliament in New Delhi. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju termed the integration of the West Bengal Assembly into NEVA as historic. He said that all assemblies and parliament of the country have now come in onto a single platform. Mr. Riju said that this application has been launched to fulfill Prime Minister Modi's vision of One Nation, One Application. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIN News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri and Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari today launched India's first flex-fuel passenger vehicle by Maruti Suzuki in New Delhi. Flex-fuel vehicles can operate on a range of ethanol-petrol blends from E20 up to E100. Speaking at the launch, the minister said the entry of flex-fuel technology into the passenger vehicle segment is not merely a product launch but the beginning of a new chapter in the country's energy transition. Mr. Puri said that large-scale adoption of flex-fuel technology can significantly multiply the impact of ethanol-based mobility.
9: India's flex-fuel journey expands from two-wheelers to four-wheelers, and this transition is significant. Today, India has over 30 crore two-wheelers on the road, but we also have 37 lakh passenger vehicles representing family mobility and the future of personal transportation. When flex-fuel technology enters this segment at scale, the impact multiplies dramatically. This is the beginning of a new chapter in India's energy transition.
7: Mr. Gadkari described the launch as a remarkable and forward-looking achievement. The minister noted that the milestone aligns with the vision of Prime Minister Narendra Modi for clean, sustainable and self-reliant mobility. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and the youth. Akashvani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards ease of doing business. A report.
10: These reforms have strengthened investor confidence, promoted entrepreneurship, and enhanced India's position as a globally competitive business destination. Startup India initiative, launched in 2016, is nurturing innovation, promoting entrepreneurship, and enabling investment-driven growth. Due to the efforts of the government, the number of startups has gone up to 2,23,000 in March this year from just around 500 in 2016. The Income Tax Department launched the new e-filing portal in June 2021 to provide greater taxpayer convenience. GST reforms provided an additional boost to ease of doing business. Talking to Akashvani News, a chartered accountant Manoj Basir of Thane in Maharashtra said that the reforms in direct and indirect taxes has brought economic stability.
11: The indirect and direct tax reform undertaken by central government are a major step forward the country's economy. Through its indirect tax reforms, the government has moved towards the vision of one nation, one tax. It has also significantly reduced the complexity of multiple tax structure by consolidating into fewer slabs, and there are indications that further rationalization may take place in the future.
10: To address procedural hurdles and simplify MSME registration, the government introduced Udyam Registration Portal. The MSME registration on the portal has increased from 10,000 in October 2020 to over 8,31,000 till date. To digitize and make public procurement more streamlined and inclusive, government e-marketplace GEM was introduced in 2016. It has achieved a cumulative gross merchandise value of over 18 lakh crore rupees. Speaking to Akashvani News, a seller in GEM and a CMD in a company, Kamini Gupta, said the process in GEM is simple and transparent.
2: The most important thing was how to reach out to different departments. And we became a seller on GEM platform, which is a government e-marketplace. And GEM became a blessing in our lives because it makes government purchasing transparent, efficient and hassle-free.
10: India's ease of doing business framework today reflects the combined strength of digital infrastructure, policy reforms and trust-based governance. With Dipend, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
7: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said, India and UK are well positioned to build a new future-oriented and mutually beneficial partnership. In his remarks at the meeting with UK Foreign Secretary Gyath Cooper in New Delhi this evening, Dr. Jayashankar said the meeting will be an opportunity to discuss the India-UK Vision 2035 under all the five pillars of growth, technology and innovation, defence and security, climate and clean energy, as well as education. On to sports. In Indonesia Open Badminton, Indian pair of M.R. Arjun and Hariharan Amsakarunan has advanced to the men's doubles quarterfinals in Jakarta. The Indian duo defeated the Malaysian pair of Aaron Tai and Kang Kai Shing in a hard-fought match today. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to number 1 in the women's 57kg category, while Asian champions Priya Ghangas in 60kgs and Vishwanath Suresh in 50kgs surged into the top 3 of their respective categories. In men's section, Sachin Sivaj and Narinder Berwal broke into the top 5 following a sustained run of international success. The southwest monsoon has arrived in Kerala today. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to very heavy rainfall is also likely over Mahe, Puducherry and Karaikal tomorrow. Meanwhile, Delhi NCR today witnessed heavy rainfall, bringing relief from warm and humid conditions. IMD also predicted very light and light rainfall accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.
12: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत। आज हम आपको सुनवाएंगे अभिनेता राजेश खन्ना पर फिल्माए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत बात करेंगे अभिनेता राजेश खन्ना की। 29 दिसंबर सन 1942 को जतिन खन्ना नाम से जन्मे बच्चे का पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए। खन्ना दंपति, जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, इस बच्चे को गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया। जतिन ने तब के मुंबई स्थित गिरगांव के सेंट सेवेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। जी हाँ, स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। कुछ नाटक भी खेले। केवल इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों ने उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार भी जीते। थिएटर व फिल्मों के लिए काम खोजने वे उस समय भी अपनी स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे।

जी हाँ श्रोताओं, आज कार्यक्रम में अभिनेता राजेश खन्ना की हम बात कर रहे हैं। काफ़ी फिल्में करने के बाद असली जो सफलता उन्हें मिली वो 1969 में आराधना फिल्म से मिली, जो उनकी पहली प्लेटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी। आराधना के बाद हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दीं।

कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता राजेश खन्ना पर फिल्माए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत और जानकारी साझा कर रहे हैं उनके बारे में। जी श्रोताओं, उन्होंने 74 स्वर्ण जयंती फिल्में की, 22 रजत जयंती फिल्में की और 9 सामान्य फिल्में की। उन्होंने 163 फिल्में की, जिनमें से 105 उनकी फिल्में जो थीं वो सुपरहिट रहीं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंगे गजल। इसमें आज आप सुनेंगे गजलें फिल्मी और गैर फिल्मी। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गजल।

अभी आपने सुनी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गज़ल रंगे गज़ल कार्यक्रम। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं रज़िया सुल्तान फिल्म की ये गज़ल।

कार्यक्रम रंगे गजल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह की आवाज में गाई ये गजल।

अभी आपने सुनी चित्रा सिंह की आवाज में गाई ये गजल फिल्म साथ साथ से। रंगे गजल कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह व चित्रा सिंह की आवाजों में गाई ये गजल।

अभी आपने सुनी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के युगल स्वरों में गाई ये गजल रंगे गजल कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इसी गजल के साथ हमारा आज का रंगे गजल कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग ए गजल FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है अब प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जो कि आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कुहकर बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by Soumya Mishra. She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सब कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मन तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नाही। मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूँ एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखा रे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिकला टोरी। पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
4: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट